0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ಶುಭಸುವಾರ್ಯಕ್ಷ್ಯತಾನಾನ್ಯದುಸ್ತಾನ್ಯಸ್ಮಾಚಾಸ್ವಾಚ ಗುರಸ್ವೇಷಿತಶ್ಚಾಹೋತರಸಿ ಭದ್ರವಾಚ್ಯಾಪ್ರೇಷಿತೋ ಮಾನುಷ ಸೂಕ್ತವಾಕಾಯ ಸೂಕ್ತಾಬ್ರೂಹಿ ಇತಿ ತ್ರಯೋವಿಂಶೋಧ್ಯಾಯಃ.
1: ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಡಿಯರ್ ಲಿಸನರ್ಸ್ ಆಫ್ shaivam.org, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಶಿವಾನಂದ ಲಹರಿ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಮಹಾಮಂಡಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀ ಆತ್ಮಾನಂದ ಗಿರಿಜಿ ಮಹಾರಾಜ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.
2: ಶತ್ರು ಜಿತ್ನಾ ಹೋ ತೋ ಶತ್ರು ಕೆ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಕಾ ಪತಾ ಲಗಾನಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೈ. ಐಸೆ ಹವಾ ಮೇ ಗೋಲಿ ಚಲಾಕರ್ ಶತ್ರು ಪರಾಸ್ತ ನಹೀಂ ಹೋಂಗೆ, ಸಮಝೆ ನೀ? ಹವಾ ಮೇ ಗೋಲಿ ಚಲಾಕರ್ ಶತ್ರು ಪರಾಸ್ತ ಹೋಂಗೆ. ಶತ್ರು ಜಹಾ ರಹಕರ್ ಯೋಜನಾ ಬನಾ ರಹೇ ಹೇ ಉಸ್ ಠಿಕಾನೆ ಕಾ ತಹಸ್ ನಹಸ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಉಸ್ ಠಿಕಾನೆ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಕಬ್ಜೆ ಮೇ ಲೋ, ತಬ್ ಶತ್ರು ಕಮಜೋರ್ ಹೋಂಗೆ. ಮಹಾರಾಜ್ ಕೌನ್ ಸೇ ಠಿಕಾನಾ ಹೈ, ಕಹಾಂ ರಹತೆ ಹೈ ಯೇ ಶತ್ರು? ಇಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಅಸ್ಯ ಅಧಿಷ್ಠಾನ, ತೀನ್ ಠಿಕಾನೆ ಹೇ ಇನ್ಕೆ. ಬಾಹರ್ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಠಿಕಾನಾ, ಇಂದ್ರಿಯೋ ಮೇ ರಹಕರ್ ತುಮೆ ಘಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಉಸ್ಸೆ ಅಂದರ್ ಮನ್ ಮೇ ರಹಕರ್ ತುಮಾರಾ ಘಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ ಯೇ. ಉಸ್ಕೆ ಅಂದರ್ ಬುದ್ಧಿ ಮೇ ರಹಕರ್ ತುಮಾರಾ ಘಾತ್ ಕರ್ತೆ ಹೇ. ಕೈಸೆ ಘಾತ್ ಕರ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ್? ಇನ್ಕೆ ಘಾತ್ ಕರ್ನೆಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಬಹುತ್ ಸುಂದರ್ ಢಂಗ್ ಸೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಗತ್ ಬತಾ ದಿಯಾ ಹೈ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ ಮನೋ ಅನುವಿಧೀಯತೆ. ಯೆ ದೇಖೋ ಉನ್ಕೆ ಘಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ಹಿ ಚರತಾಂ ಯನ್ ಮನೋ ಅನುವಿಧೀಯತೆ ತದಸ್ಯ ಹರತಿ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಾಯುರ್ ಗಂಧಾ ನಿವಾಸಯಾತ್ ಬಾಹುರ್ ನಾವ ಮೀಮಾಂ ವಸ. ಯೇ ಉನ್ಕೆ ಘಾತ್ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹೈ. ಯೇ ಶತ್ರು ಪಹಲೆ ತೋ ಇಂದ್ರಿಯೋ ಕೋ ವಿಷಯ ಮೇ ಭೇಜ ದೇಂಗೆ, ಔರ್ ಜಬ್ ವಿಷಯ ಕೆ ಪ್ರತಿ ಇಂದ್ರಿಯಾ ಪೂರಿ ತರ ಆಸಕ್ತ ಹೋ ಜಾಯೆಂಗೆ ತೋ ಇಂದ್ರಿಯ ಕೆ ಪಿಛೆ ಪಿಛೆ ಮನ್ ಭೀ ಜಾಯೆಗಾ, ಔರ್ ಮನ್ ಕೆ ಪಿಛೆ ಪಿಛೆ ಬುದ್ಧಿ ಭೀ ಜಾಯೆಗಿ. ಜಬ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನ್ ಔರ್ ಬುದ್ಧಿ ತೀನೋ ವಿಷಯ ಮೇ ಲಗ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ತೋ ಯೇ ಕಾಮ ಔರ್ ಕ್ರೋಧ ರೂಪಿ ಶತ್ರು ಆತ್ಮಾರೂಪಿ ರಾಜಾ ಕೋ ಉಸಿಗೆ ಸಾತ್ ಖೀಚಕರ್ ವಿಷಯ ಮೇ ಲೆ ಜಾಕರ್ ಫಸಾ ದೇಂಗೆ. ಔರ್ ಆತ್ಮಾರೂಪಿ ರಾಜಾ ಮೈ ವಿಷಯ ಮೇ ಫಸ್ ಗಯಾ ಯೆ ಬೋಧ ಉಸ್ಕೋ ನಹೀಂ ಹೋ ಪಾತಾ ಹೈ. ಆಹ್ ಕ್ಯಾ ಮಜಾ ಆ ಗಯಾ ಹೈ. ಬಾರಿಶ್ ಹೋ ರಹೀ ಹೋ, ಕಾಫಿ ಔರ್ ಗರಂ ಗರಂ ಪಕೋಡಾ ಖಾತೆ ಸಮಯ ಮೇ ಯಹಿ ಕಹೆಗಾ ಕಿ ಕ್ಯಾ ಮಜಾ ಆ ಗಯಾ ಹೈ, ಔರ್ ದೋ ಪಕೋಡೆ ಕಿ ಜಗಹ ಚಾರ್ ಪಕೋಡೆ ಖಾ ಗಯಾ, ಚಾರ್ ಕಿ ಜಗಹ ಆಠ ಖಾ ಗಯಾ, ಮಜಾ ಆ ಗಯಾ. ಔರ್ ಶತ್ರು ಕಹತಾ ಇಸಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಯೆ ಸಬ್ ತಯಾರಿ ಕಿಯಾ ಹೈ ಮೂರ್ಖ, ಇಸಿ ಕೆ ಲಿಯೆ ತೋ ಯೆ ತಯಾರಿ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಅಬ್ ಜಬ್ ಗರಂ ಕಾಫಿ ಔರ್ ಚಾರ್ ಕಿ ಜಗಹ ಆಠ ಪಕೋಡೆ ಖಾ ಗಯಾ, ತೇಲ್ ಭೀ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ, ನಮಕ್ ಭೀ ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ, ಕಾಫಿ ಭೀ ಹೈ ಉಸ್ಮೇ ಜೋ ಕ್ಯಾಫೀನ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಾಫಿ ಮೇ ವೋ ಭೀ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಹೈ. ಈ ಸಬ್ ವಾತಾವರಣ ತಯಾರ್ ಕಿಯಾ ಕಿಸ್ನೆ? ಕಾಮ್ ನೇ. ಇಸ್ಕೋ ಪಛಾಡನಾ ಹೈ, ದೂಸರೆ ಉಪಾಯ ಸೇ ತೋ ಪಛಾಡ ನಹೀಂ ಪಾಯೆಂಗೆ, ಇಸ್ ತರಹ ಪಛಾಡ ದೇಂಗೆ. ತಬ ಖಾನೆ ಕೆ ಬಾದ ಟರ್ನ್ ಖಾಯಾ ತೋ ದೂಸರೆ ದಿನ ಸಿರ್ ನಹೀಂ ಉಠಾ ಪಾ ರಹಾ ಹೈ. ಕ್ಯಾ ಹುವಾ ಮಹಾರಾಜ್? ಕ್ಯಾ ಕರೆ, ಚಕ್ಕರ ಆ ರಹಾ ಹೈ, ಕಾಮ ಕರ್ನೆ ಕಿ ಇಚ್ಛಾ ನಹೀಂ ಹೋ ರಹೀ ಹೈ. तो पहुंच गया डॉक्टर के यहां। महाराज, डॉक्टर ने जब आला लगाकर देखी, प्रेशर हाई हो चुका है। अरे तुम्हारा प्रेशर ज्यादा है, कम करो। क्या खाया था कल, पूछेगा डॉक्टर, क्या बताओगे? नहीं कुछ नहीं डॉक्टर साहब, कल थोड़ा बारिश ज्यादा भीज गया था, घर में जो है पकोड़े थे तो कॉफी और पकोड़े खाने की इच्छा हुई, थोड़ा दो चार पकोड़े ज्यादा ही खा लिया था। फंस गए भाई है? अब न जप कर पाओगे, न तप कर पाओगे, न पूजा कर पाओगे, न पाठ कर पाओगे। पछाड़ दिया ना है, परास्त कर दिया ना। ये देख लो, पहले तो शत्रु क्या है ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु रहते कहां हैं ये पहचानना जरूरी है, उसके बाद ये शत्रु किस तरह काम करके हमको परास्त करते हैं उस सिस्टम को भी जानना जरूरी है। तो ये सारी प्रक्रियाओं को तुम जानोगे तब तो इन शत्रुओं को जीतने में तुम सक्षम होगे, अन्यथा जीवन तो कितनी जीवन हमारा इसी तरह परास्त होकर बर्बाद हुआ है। यदि बर्बाद न होता तो आज तक जीव बनकर न भटकते। जीवन सार्थक होता तो अभी तक जीव बनकर भटकना पड़ता है। बड़ा सुंदर एक श्लोक रूपक के रूप में है। आरूढ़ भक्ति गुण, गुण शब्द का अर्थ होता है रस्सी, डोरी, समझे नहीं? गुण शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में रस्सी, डोरी। हाँ, अब चाप शब्द का अर्थ होता है धनु, समझे नहीं? धनुष, धनुष बाण, और उस धनुष में डोरी रस्सी चढ़ाई जाती है। कैसे डोरी? बोले आरूढ़ डोरी, आरूढ़ गुण कुंचिता। जब डोरी कसी जाती है तब धनुष बैंड होकर झुकता है, और डोरी खोल दो तो वह सीधा ही रहता है, लकड़ी की तरह, डंडे की तरह। जब एक छड़े में डोरी बांधो जोर से और दूसरे कोने में, दोनों कोने को डोरी से कसोगे तो वह बैंड होकर तो डंडा धनु झुकेगा। राजा लोग या फिर योद्धा लोग जब लड़ने के लिए तैयार होकर चलते हैं तो सबसे पहले प्रत्यंचा डोरी चढ़ाते हैं, और जब विश्राम होता है तो डोरी खोल के रखते हैं। जब युद्ध विराम होता है ना तो सेना लोग डोरी खोल देते हैं, निकाल देते हैं, और जब युद्ध में जाने की तैयारी करनी होती है तब तो फिर डोरी चढ़ाते हैं, बांधते हैं, कसते हैं। तो तैयारी पूर्वक अवस्था को यहां आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भावचापम, भावना रूपी धनुष बाण, भावना माने ध्यान, ध्यान रूपी धनुष में भक्ति रूपी डोरी चढ़ा दिया गया है। ये शत्रु जीतने की तैयारी है, ध्यान देना, क्योंकि शत्रु जीतना है हमें। शत्रु क्यों जीतना है? सुस्थिर राजलक्ष्मी प्राप्त करना है। शत्रुओं ने, जब तक शत्रुओं को नहीं जीतेंगे तब तक हमारी राज्य लक्ष्मी सुस्थिर नहीं होगी। ये दिखावा जो भक्ति से तुम्हारी मुक्ति नित्य नहीं होगी है, यहां तो नित्य मुक्ति मुक्त चाहिए, नित्य मुक्तता, अन्यथा तुम मुक्त भी होगे तो फिर जय विजय की तरह पतित होना पड़ेगा, नित्य नहीं होगा ना वो मुक्ति, वहां पर भी कुछ न कुछ गलती करोगे, सुस्थिर न होकर अस्थिर हो गए। क्या था मुक्ति अस्थिर होने में हेतु, क्या था? द्वैत दृष्टि, प्रसंग आप लोगों ने सुना है कई बार, भेद बुद्धि, भगवान के अनन्य सेवक जय विजय द्वारपाल हो गए, सामीप्य मुक्ति प्राप्त किया, सालोक्य नहीं, सामीप्य और ज्यादा महत्वपूर्ण है। सालोक्य का मतलब होता है भारत के किसी कोने में तुम पैदा हो जाओ तो ये सालोक्य हो गया, है ना? सामीप्य हो गया, अरे भाई राष्ट्रपति के आसपास में कहीं घर बना के रह गए, है ना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आसपास में है, और इसलिए सामीप्य हो गया, उनकी सामीप्यता। इसी तरह वैकुंठ, इतना विशाल लोक है, उस किसी लोक के वैकुंठ के किसी कोने में पैदा होना तो सालोक्य हो गया, लेकिन भगवान नारायण के नजदीक ही तुमको कुटिया बनाने को मिल जाए, हैं? क्या गौरव है, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य, देख लो सायुज्य का मतलब होता है उसके काम में आना, उसके सेवक बनना, उससे अभिन्न होकर रहना, समझे कि नहीं? सायुज्य, सामीप्य और सायुज्य में बड़ा अंतर है। सामीप्य वाला अंतरंग में नहीं जा सकता है, बहिरंग में रह सकता है, बाह्य कक्ष में रहेगा लेकिन अंतरंग नहीं जाएगा, समझे कि नहीं? बोलो। तुम्हारा मोटरसाइकिल तुम्हारे बेडरूम में जा सकता है, हैं? बोलो, जा सकता है बेडरूम में मोटरसाइकिल, लेकिन तुम्हारा चश्मा बेडरूम में जा सकता है कि नहीं? तुम्हारे बेडरूम में तुम्हारा चश्मा जा सकता है कि नहीं, बोलो? है, देख लो, अंतरंग हो गया ना, मोटरसाइकिल बहिरंग हो गया। भक्तों के ऐसी कैटेगरी वैष्णवों ने स्वीकार की है, कुछ मुक्ति ऐसे है कि उसके लोक में जन्म ले पहुंच गए तो वही मुक्ति है, बड़ा आनंद है वो लोक में, लोक में नहीं है, उससे और ज्यादा कृपा हो गई है उसके महल में आसपास में, और उससे और ज्यादा मिल गई तो सामीप्य और नजदीक, उसे और कृपा हुई तो सारूप्य। जब तक सारूप्य भक्ति नहीं मिलती है तब तक जो है वह सुस्थिर राजलक्ष्मी नहीं होता है, सुस्थिर नहीं होता वो मुक्ति, सुस्थिर नहीं होता। अब यह प्रसंग यहां भगवान शंकराचार्य जी भक्त शत्रु को जीतकर अपना साम्राज्य प्राप्त करना है उसके लिए साधन दो वस्तु को साधन के रूप में प्रयोग किया, भावना को चाप के रूप में, भावना माने ध्यान, को धनुष बाण के रूप में, और दृढ़ भक्ति को मजबूत रस्सी के रूप में। वो रस्सी से युद्ध नहीं जीता जा सकता। जिस रस्सी से धनुष बाण को तैयार किया और तीर चढ़ाकर जब खींचते ही टूट जाए, वो तो कमजोर रस्सी है, और तीर छोड़ने से पहले तान खींचना पड़ेगा, खींचते ही रस्सी टूट जाए तो लक्ष्य भेदन नहीं कर पाएगा ना। तो डोरी कैसी चाहिए? बोले सुदृढ़, आरूढ़ भक्ति, गुण कुंचित, कुंचित माने खींचना, गुण माने रस्सी, भक्ति को रस्सी बनाओ, भावचाप युक्त ही। तो हो गया धनुष तैयार, डोरी और धनुष को, बाण को, धनुष को चढ़ा दी तो धनुष तो तैयार हो गया। तो बाण क्या है भाई? अब तीर चाहिए कि नहीं? धनुष तो हो गया, लक्ष्य भेदन तो धनुष नहीं करेगा ना, लक्ष्य भेदन तो तीर बाण, धनुष बाण बोलते हैं ना। तो बाण चाहिए कि नहीं? तीर चाहिए। क्या है तीर? शिवस्मरण, नित्य निरंतर शिव का स्मरण ही। शिव भक्ति रस्सी है, शिव ध्यान धनु है, और शिव स्मरण क्या है? बाण है। शिवस्मरण बाण गणे ही, धनुष एक हो तो भी चलेगा, तीर एक से काम नहीं चलता, तीर ज्यादा चाहिए, इसलिए बहुवचन प्रयोग कर दिया है। शिवस्मरण बार बार करना पड़ेगा, एक बार करने से नहीं होगा, बार बार शिव स्मरण करो, कभी भूलना नहीं, कभी विस्मरण न हो, इसी को आसुप्ते रामृते कालम नयत वेदांत चिंतया। सोते समय भी स्मरण करो, जगते समय भी स्मरण करो, चलते समय भी स्मरण करो, बैठते समय भी स्मरण करो, तो यही हो गए बाण, शिव स्मरण बाण। कैसे? बोले अमोघई, शिव स्मरण ऐसा करो कि वह व्यर्थ न जाए। शिव स्मरण को मनोरंजन नहीं मान लेना, वो अमोघई शब्द से यहां शिव स्मरण मनोरंजन नहीं मानना, अमोघई वो तो जीवन के कष्ट से कष्टतम अवस्था में भी उसको नहीं छोड़ना है, तभी जो शिव स्मरण अमोघ बाण होगा। अमोघ बाण का अर्थ होता है लक्ष्य भेदन करे, करने के बाद वह लक्ष्य को भेदन किए बिना व्यर्थ न जाए। धनुष में चढ़ाकर जब उसका वेदन करते हैं तो लक्ष्य वेदन न किए बिना वह बेकार नहीं जाता, उसको अमोघ बोलते हैं। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप युक्त ही शिवस्मरण बाण गणेर मोघई। महाराज, तुम्हारी तैयारी तो ऐसे है कि बड़े भारी शत्रुओं से लड़ना है। बोले हां, निर्जित्य किल विष रिपुन, किल विष ही रिपु है तुम्हारे, किल विष माने पाप, पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है बोलो? देखो, भक्ति सिद्धांत में तुम जो कह रहे हो वो बड़ा पाप हो सकता है, ज्ञान सिद्धांत में भगवान को भूल जाना पाप नहीं है, ध्यान देना। ज्ञान सिद्धांत में सबसे बड़ा पाप क्या है? अपने को भूल जाना, भगवान को भूल जाना इतने ज्यादा घातक नहीं है, नुकसान नहीं है। अपने को, खुद को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान तो यह है। को हम, ये तुमको ही पता नहीं है, अपने ही बारे में तुमको जानकारी नहीं है। और सनस सुजातीय दर्शन में तो भगवान सनस सुजात ने धृतराष्ट्र को कहा, किम तेन न कृतम पापम। ये सनस सुजातीय दर्शन का श्लोक है। किम तेन न कृतम पापम चौरेण आत्मा अपहारिण। उस चोर ने कौन सा पाप नहीं किया दुनिया में, जीवन में? किस चोर ने? आत्मा अपहरण, अनात्मा शरीर को आत्मा मान लिया, अनात्मा प्राण को आत्मा मान लिया, अनात्मा इंद्रियों को आत्मा मान लिया, अनात्मा मन बुद्धियों को आत्मा मान लिया। इससे बढ़कर किम तेन न कृतम पापम, सबसे बड़ा पाप तो यही है। और जो पाप है वो तो बहुत क्षुद्र पाप हैं, बच्चे कच्चे हैं पाप के। सबसे बड़ा पाप तो यहीं से शुरू होता है। अकर्ता को कर्ता बता देना, अभोक्ता को भोक्ता बता देना, ज्ञान स्वरूप को अज्ञानी मान लेना, अजन्मा को सजन्मा मानना, ये कम पाप है? ये कोई छोटे मोटे पाप है? ये उसी के तरफ यह संकेत कर रहे हैं आदिगुरु शंकराचार्य। किल विष रिपुन, पाप ही शत्रु है। हमारा शत्रु हमारे ही पाप। अब पाप को पैदा किया किसने, बोलो? पाप के बाप कौन है? तुम खुद हो। अध्यात्म में दूसरे के पाप दूसरों को कष्ट नहीं देता। मेरा पाप तुमको कष्ट देने जाएगा? बोलो। मैंने जो पाप किए, मेरा पाप तुमको कष्ट देने के लिए नहीं जाएगा। तुमको कष्ट कौन देता है? तो तुम्हारा ही पाप, तुमने जो की है वो पाप है। इसलिए महाभारत में एक प्रसंग आता है, कहते हैं पुरुषोत्तम महीना शुरू हो गया परसों से, अब तुम यदि कोई यदि कहे कि मैं एक टाणो खाऊंगा, एक टाइम खाऊंगा, नित्य गंगा स्नान करूंगा, चलो नित्य न करो तो 21 तारीख को तो कर लो नर्मदा स्नान। 21 तारीख को नर्मदा स्नान में जा रहे हैं ना कुछ लोग? हाँ, सुना है? तो कोई नियम बना लेता है कि रोज सुबह 4 बजे उठना है और 4 बजे उठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 3 घंटा मुझे रोज जप करना है। समझे? 4 बजे उठकर जप शुरू करेगा तो कब तक? 7 बजे तक। 7 बजे तक जप करो, फिर 7:30 बजे प्रेमपुरी आश्रम में आ जाओ। ठीक है कि नहीं? बोलो। करना क्या है और तुमने? बोलो। सुबह सुबह करना क्या है? 4 बजे उठो, पट्टा ना धोकर आसन लगा के बैठ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जब शुरू कर दो। जब तुम ऐसा संकल्प करते हो, निश्चय करते हो, शाम को 4 बजे उठने का संकल्प करके अलार्म लगाकर सोते हो, तो ये पता चल जाता है किसको, ये तुम्हारे संकल्प का पता किसको चलता है, तुम्हारे पापों को, पापों को पता लग जाता है ये षड्यंत्र कर रहा है। 4 बजे उठूंगा कहता है, स्नान करूंगा कहता है, जप करूंगा कहता है, मर गए भाई। अब तो हम तो मर गए, बिना मौत मर गए, कौन पाप। तब वो लोग, तुम तो सो जाते हो संकल्प करके, वो मीटिंग करने लगते हैं। ये सच्ची बात है, मैंने गप नहीं किया है, महाभारत में स्पष्ट लिखा है। तब वे लोग मीटिंग करने लग जाते हैं कि इसको इसके संकल्प अनुसार, इसकी योजना के अनुसार काम करने नहीं देना है, नहीं तो हमारा सत्यानाश करेगा ये, हम तो मर जाएंगे, हमारा तो नाश हो जाएगा ये। तब क्या करना है? तो एक बोलता है, मुझे आइडिया आ गया भाई। क्या? जब वो अलार्म लगाकर सिरहाने में रखेगा घड़ी, जब घड़ी का अलार्म बजेगा, तो उसके हाथ में जाकर मैं बैठूं और फट वो अलार्म को बंद करने के लिए उसके हाथ को मैं चला दूंगा, चिंता नहीं करो। तो वो हाथ में बैठता है, कहते हैं ठीक 4 बजे के आसपास में आकर हाथ में बैठ जाता है योजना बनाकर। तो प्रे अलार्म बज गया, टू टू टू टू, सोए सोए हाथ बंद करके फिर रजाई ताल ली। क्या मजा, पाप बड़े खुश हो जाते, वास या वास है, तुमने काम की बेटा, अब आराम से बैठेंगे भाई। और 7 बजे के प्रेमपुरी जाने की जगह 9 बजे तक सो गया। राज किसका हुआ बोलो? पापों का राज हुआ कि नहीं? जीत गए कौन? ये दृष्टांत से तुम, ये महाभारत में स्पष्ट लिखा है, करते यही है कौन? तुम्हारे किलबिश, तुम्हारे पाप, षड्यंत्र करते हैं। क्योंकि ये नियम बनाकर करने लग जाएगा तो हमारा तो नाश हो जाएगा, हम तो मर जाएंगे। तो बड़ी सावधानी, दृढ़ता चाहिए हो, छोटे मोटे हथियार से इनसे लड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने बड़े दृढ़ हथियार की तैयारी कर रहे हैं। आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चाप, युक्त ही शिव स्मरण बाण गणई रमो गई। निर्जित्य किलबिष रिपुन, शत्रु हाथ में आकर, तुम्हारा पाप हाथ में आकर घड़ी तक पहुंचने के जगह तुम फट से उठो, हिम्मत करो, उठो, कुछ भी हो, अब नहीं सोऊंगा, थोड़ा सा हिम्मत करो। एक दिन, 2 दिन सिर दुखेगा, 3रे दिन तो फिर 4 बजे उठे बिना सिर दुखेगा। यही दृढ़ भक्ति है, यही तुम्हारी साधना में दृढ़ता है। डटे रहो, लग जाओ साहस से। निर्जित्य किलबिष रिपुन विजयी सुधींद्र, सुधियों में इंद्र, सुधींद्र श्रेष्ठा, श्रेष्ठ सुधी व्यक्ति, सुष्टुधी वाले व्यक्ति क्या करते हैं? अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं बोलो? वो इस बात को जानते हैं कि शत्रु मेरे कौन है, उनसे कैसे लड़ा कर जाए, तो लड़ने की तरीका उनको पता है। इसलिए आरूढ़ भक्ति गुण कुंचित भाव चापम, शिव स्मरण बाण, इन सारी साधनों से सुसज्ज होकर सुधींद्र अच्छे बुद्धि वाले व्यक्ति क्या करते हैं, किल भी शरीफुन अपने पाप रूपी शत्रुओं को निर्जित्य विजयी, उन शत्रुओं को जीतकर विजय श्री को प्राप्त करते हैं। कैसा है वो विजय? सानंदमा बहती, फिर से जीवन वह शत्रु रहित होकर आनंद से विचरण करते हैं, क्योंकि अब शत्रुता है ही नहीं। अब तो अपना साम्राज्य कैसा हो गया, सुस्थिर राज लक्ष्मी। बस पहले ही थोड़ा संघर्ष लड़ते समय थोड़ा सा साहस करना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बार इनों को इन तैयारियों से जीत लोगे ना, फिर तुम्हारे राज्य लक्ष्मी सायुज्य सामिप्य साष्ट्य सारूप्य आदि जो कुछ भी मोक्ष हो वह तुम्हारी स्थिर रहेगी, फिर वहां से कभी विचलन नहीं होगा। सानंद मावहती, आनंद पूर्वक वह भक्त वह मुक्त पुरुष सुस्थिर राजलक्ष्मी अपने साम्राज्य का वो पूरा का पूरा भोग कर पाएगा, यानी उपयोग कर पाएगा, अनुभव कर पाएगा। ये इसी बात को और आगे शंकराचार्य जी ये तो हो गया शत्रु को जीतने की बात। अब दूसरे भाव से भक्ति को प्रस्तुत करते हैं।
1: ओम नमः शिवाय। डियर लिसनर्स ऑफ शैवम.org, द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्पिरिचुअल डिस्कोर्स। इन दिस यू आर अबाउट टू लिसन पुष्पदंस शिव महिम्न स्तोत्र प्रेजेंटेड बाय स्वामी श्री मुक्तानंद जी महाराज। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।
3: ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव

सृष्टिसृष्टिराद्या वहति विधिहुतम् या हविर्या च होत्री ये द्वे काले विधत श्रुति विषय गुणः या स्थिता व्याप्त विश्वम् यामाहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु

भगवान शिव की महिमा बड़ी अनंत अपार है। वंदे देव ममापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्तजनाश्रयम जवरदम, वंदे शिवम शंकर। प्रातः नमामि पब, हम किसको नमस्कार करें? जो भवभीति हरम, संसार के भय को हरण करने वाले हैं। संसार का भय क्या है सबको मालूम है। सबसे बड़ा भय यही है, और वो कौन दूर कर सकते हैं? कल हम बात कर रहे थे, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम। चिदाकाश बड़ा प्यारा शब्द है। चिदाकाश, चित माने चैतन्य, और आकाश के दो अर्थ हैं। एक तो आकाश से व्यापक की उपमा दी जाती है, जो चैतन्य है और जो व्यापक है, और एक आकाश काश प्रकाशने धातु है जिसे आकाश बनता है, जो प्रकाशित है, जो आनंद स्वरूप है। ऐसे जो चिदाकाश हैं, जो सर्वव्यापक हैं, और आकाशवासम, आकाश ही जिनका वास है, अथवा आकाश को जिन्होंने अपना वास यानी वस्त्र बना रखा है, तो भगवान शंकर को क्या कहते हैं? दिगंबर। क्या कहते हैं? दिशा ही है अंबर जिनकी। तो आकाशवासम, जो आकाश में रहते हैं, जो स्वयं आकाश स्वरूप हैं, स्वयं आकाश स्वरूप हैं, उनको जब हम कहें कि कहां रहते हो, कहां रहते हैं, तो सब जगह रहते हैं। यद्यपि जो आकाश है उसका वो आधार है, फिर भी आकाश के समान वो व्यापक है। अथवा आकाश का जिन्होंने वस्त्र बना रखा, अर्थात दिशाएं जिनके वस्त्र दिकपट धरू, दिशाएं जिनके पट हैं, वस्त्र हैं, दिगंबर, बड़ा प्यारा नाम है दिगंबर। क्यों कहा दिगंबर? अंबर है ना, अंबर, अंबर माने आकाश और अंबर माने वस्त्र। तो देखो, अब दिगंबर की जब बात है तो भगवान दिगंबर क्यों हैं? क्या वो दिगंबर हैं? तो एक बहुत सुंदर बात कही, शिव के दो रूप हैं, निर्गुण सगुणश्चेति शिवो गेयो द्विधतः। शिव के दो रूप, एक निर्गुण और एक सगुण, दो रूप है शिव के। अगले श्लोक में हम बात करेंगे क्या कहा। निर्गुण प्रकृतिरन्य सगुण सकल स्मृत। जो प्रकृति से परे हैं वे निर्गुण हैं, और जिन्होंने माया का आश्रय ले लिया वे सगुण हैं। सकल माने कला से युक्त। कौन सी कला आ गई उनमें? संसार को उत्पन्न करने की, संसार को धारण करने की, और संसार का संहार करने की, ये कला उनमें आ गई। पंच कृत्य संपन्न महादेव, पांच कृत्य उनके। तो ये जो कला आई उनके अंदर, कला के आने पर वो सगुण हो गए। सतयुग में ध्यान करते थे, निर्गुण भगवान की आराधना करते थे, धीरे धीरे धीरे धीरे बड़ा मुश्किल हो गया। तो भगवान की आराधना के दो रूप हमारे पास हैं, और तीसरा रूप का ध्यान नहीं होता, वो तो स्वरूपावस्थिति है, उसका नाम है निर्गुण निराकार, निर्गुण निर्विशेष, निर्गुण
निर्विशेष। जो निर्गुण है और निर्विशेष है वे तो अवस्था है, लेकिन ध्यान के लिए सगुण निराकार और सगुण साकार दो रूप हैं। आप कहीं भी आप देखिए, आप भागवत पढ़िए, जिस समय परीक्षित ने प्रश्न किया महाराज जो व्यक्ति अभी अभी मरने जा रहा है उसके लिए क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उसको, जो म्रियमाण है जो मरने जा ही रहा है उसको क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज ने यहीं से दूसरा स्कंद प्रारंभ हो जाता है। सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा कि जो म्रियमाण पुरुष है अभी मरने जा रहा है, म्रियमाण में दोनों अर्थ हैं, एक तो जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई कि इतने दिन में मरेगा जैसे सुखदेव और परीक्षित सॉरी जैसे मालूम है सातवें दिन मृत्यु है, और एक जिनकी मृत्यु सन्निकट है वृद्धावस्था आ गई कभी भी जा सकते हैं, दो साल में दस साल में पांच साल में कभी भी जा सकते हैं, तो दोनों ही म्रियमाण क्या करना चाहिए, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं सबसे पहले उसे घर से बाहर निकल जाना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहले घर से बाहर निकल जाना चाहिए। अब सुखदेव जी के समय तो जंगल थे, देखो समय समय की बात है, एक समय आप देखिए तप और त्याग ऋषियों का, एक समय जब सन्यासी बनने के लिए किसी को बनना होता था वो घर छोड़ देता था, मठ मंदिर नहीं होते थे, मठ और मंदिर पेड़ के नीचे ही उसे गर्मी सर्दी वर्षा तीनों ऋतुएं पेड़ के नीचे बितानी होती थी, कितना त्याग होगा कितना तप होगा। तो जिस समय सुखदेव जी ने कहा उस समय जंगल बहुत थे, और ये जो आप फल खाते ना आम है सेब है संतरा है और तमाम फल जितने भी खाते हैं ये सब जंगली फल थे, ये सब जंगल में ही होते थे, कंद मूल फल जंगल में ही होते थे, तो फल मूल खाकर के काम चल सकता था, अब तो मूल खत्म ही हो गए, पहले तरह तरह के जमीन में से कंद निकलते थे, अब वो तो धीरे धीरे जंगल समाप्त हो गए, लेकिन सुखदेव जी कहते हैं सबसे पहले उसको घर से बाहर निकल जाना चाहिए। बाहर निकल करके क्या करें, क्या करें बाहर निकल करके, तो कहते हैं जो त्रिवृद अक्षर है, त्रिवृद अक्षर समझ गए आप, ओम, कौन ओम, ओम का ध्यान करें, तो ध्यान की वहां विधि बताइए, ध्यान की वहां विधि बताइए, घर से बाहर निकल करके ओम का प्रणव का ध्यान करें। अब महाराज प्रणव का ध्यान तो सबके बस की नहीं है, तो क्या करें, तो फिर सगुण निराकार की उपासना ही है ये सब, तो कहते फिर विराट पुरुष का ध्यान करें, धारणा किसकी करें, पाताल में तस ही पाद मूलम, फिर पूरे विराट पुरुष का ध्यान करें। विराट पुरुष क्या है, ये जितना भी ब्रह्मांड है सारा का सारा विराट ही है। महाराज फिर भी बात ना बने तो फिर आओ फिर ध्यान करो भगवान कृष्ण का। तो ये जो ध्यान है, ध्यान है, चिदाकाशवासम माकाशवासम भजे हम, किसका भजन करें, जो चिदाकाश स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है उसका हम ध्यान करें। हमने आपको बताया शिवजी के ऊपर बहुत बड़ा शास्त्र है, शिव सूत्र है वसुगुप्त के, प्रतिभिज्ञा दर्शन है, स्पंदकारिका है, उनके ऊपर बड़ा विस्तार है, और उस विस्तार में वहां विज्ञान भैरव एक पुस्तक है, विज्ञान भैरव, विज्ञान भैरव में 112 विधि ध्यान की बताई है, कितनी विधि 112 है, और इन 112 विधियों में से एक विधि है चिदाकाश धारणा, 112 विधियों में से एक विधि है चिदाकाश धारणा। अब ये चिदाकाश धारणा क्या है, आकाश को आप धारण कर नहीं सकते, आकाश को अपने मन में ला नहीं सकते, आकाश को अपनी बुद्धि में ला नहीं सकते, तो चिदाकाश धारणा क्या है, यही है चिदाकाश वासम आकाश वासम भजे हम, फिर अपने आप को चैतन्य समझ करके, मैं चैतन्य हूं, चिदानंद
मैं चैतन्य हूं, मैं आकाश स्वरूप व्यापक हूं। तो अपने अंदर ऐसी धारणा करके ध्यान किया जाता है। ध्यान की अनेक विधियां हैं, वो तो अब विषय नहीं है, भगवान शिव जी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा जो चिदाकाश स्वरूप है और दिगंबर है, तो ये जो दिगंबरता है ये भगवान के सगुण और निर्गुण दो रूप में है। जब हम भगवान के निर्गुण अथवा सगुण निराकार की बात करते हैं, सगुण निराकार, तो भगवान दिगंबर हैं। क्या है भगवान? दिगंबर हैं। और जब हम भगवान के सगुण साकार की बात करते हैं, तो आप उनको जो मर्जी पहना दो, फिर चाहे आप भस्मी रमा दो, फिर चाहे आप गज चरम पहना दो, फिर चाहे आप सर्पों की माला पहना दो, जो भी पहनाओ, लेकिन मूल रूप में तो वे व्यापक हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आकाश की तरह से व्यापक हैं। अब आप देखो, भगवान तो दिगंबर हैं, क्या हमारा उद्धार बिना दिगंबर हुए हो सकता है? हमारे भी अंबर हैं, हमने भी आवरण पहन रखा है, और महाराज जैसे वो रेशम का कीड़ा होता है ना, रेशम का कीड़ा अपने ही अंदर से जाल बुनता बुनता बनता बनता और खुद ही उसके कवर में बंद हो जाता है, कोष में बंद हो जाता है। ठीक ऐसे हमारे भी तीन कोष हैं, कोष तो पांच बताए हैं, क्यों कोष कितने बताए हैं? पांच हैं, पांच कोष हैं। अगर इन पांच कोषों का, कोष माने आवरण, कोष माने, क्या हम बिना पंचकोषातीत हुए अपना कल्याण

श्रुति है, एतम प्राणमयम आत्मानम उत्संक्रम्य, ये जो प्राणमय कोष है इससे हमें ऊपर उठना है, ये जो मनोमय कोष है इससे हमें ऊपर उठना है, ये जो विज्ञानमय कोष है इससे हमें ऊपर उठना है, और ये जो आनंदमय कोष है, आनंदमय कोष में रहना है, ऊपर उठना है। हाँ, ऊपर उठना है। क्यों? वही संस्कार मात्र का नाम ही आनंदमय कोष है, इससे भी हमें ऊपर उठना है। तो निरावरण का अर्थ है कि कोई आवरण नहीं माया का, माया का कोई, वही चिदाकाश माकाश वासम भजेहम, कोई आवरण नहीं है माया का, किसी प्रकार का आवरण ही नहीं है। इसलिए भगवान शिव को महेश्वर कहते हैं, महेश्वर, उनको महादेव कहते हैं। फिर बड़ी सुंदर बात कही, निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतेतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोहम। देखो, निराकार शब्द का प्रयोग किया। शिव का क्या आकार है? तवैश्वर्यम यत्नाद्यदुपरि विरिंचिर हरिरध परिच्छेतुम याता वनल मनल स्कंध वपुष ततो श्रद्धा भक्ति भर गिरिश कृणद्याम गिरिशयत स्वयं तस्थे ताभ्याम तव किम अनुवृत्तिर्न फलति। भगवान का ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए विष्णु और ब्रह्मा में कंपटीशन हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, विष्णु ने कहा मैं श्रेष्ठ हूं, दोनों में विवाद हो गया, बड़ा विवाद हुआ महाराज। दिव्य सहस्र वर्षों तक विवाद होता रहा विष्णु और ब्रह्मा में। लेकिन जब ये विवाद समझ में नहीं आया, सुलझने नहीं पाया, तो एक दिव्य प्रकाश स्तंभ अनल मनल स्कंध वपुष, अनल स्कंद, एक दिव्य प्रकाश स्कंद माने स्तंभ, प्रकाश स्तंभ उन दोनों के बीच में प्रकट हो गया। स्कंभम तंब्रूही कतमह स्विदेव सह, विचार करके कहने लगे बताओ ये स्कंभ कौन है, कौन है ये? तवैश्वर्यम यत्नाद्यदुपरि विरिंचिर हरिरध, हे प्रभो, उसको जानते नहीं थे ये क्या हमारे बीच में प्रकट हो गया। थोड़ा सा तेज कर दो भाई। क्या हमारे बीच में प्रकट हो गया, समझ नहीं आ रहा, ये क्या दिव्य प्रकाश स्तंभ हमारे मध्य में प्रकट हो गया, कौन है ये, इसका पता लगाओ। तो विष्णु ने वराह का रूप धारण किया और जल में चले गए, और ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और आकाश में चले गए, पता लगाने के लिए कि ये ज्योतिस्तंभ है क्या, ये पता लगाने के लिए ये ज्योतिस्तंभ क्या है। और महाराज दिव्य सहस्र वर्षों तक वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन पता नहीं लगा। ब्रह्मा को ऊपर से एक फूल आता हुआ दिखाई दिया। ब्रह्मा ने कहा रे इसका कहीं अंत है? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम इसका अंत कहां है, मैं तो दिव्य सहस्र वर्षों से नीचे ही गिरता हुआ आ रहा हूं, नीचे गिरता हुआ ही आ रहा हूं, मैं अब तक नीचे भी नहीं पहुंच पाया हूं। हा हा, ये भगवान शिव का ऐश्वर्य है जिसका अंत न विष्णु को प्राप्त हुआ और न ब्रह्मा को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि अनंत का अंत कभी होता नहीं है, यही है चिदाकाश। इसी को ही चिदाकाश कहते हैं, जो अनंत है, जो अनंत है उसका अंत मिलने वाला नहीं है। अगर अंत मिल गया तो अंत वाला हो गया, तो शांत हो गए महाराज।

0: आज फिर अनंत कहां हुए, न विष्णु को अंत मिला न ब्रह्मा को अंत मिला। और अंत का एक और अर्थ है, एक और भी अर्थ है अंत का। देखो भगवद गीता में प्रयोग हुआ दूसरे अध्याय में, ना भावो ना सतो विद्यते भावः, ना भावो फिर क्या है, उभयोरूपी दृष्टो अंतस्त्वनयोस् तत्वदर्शी भी, अंतः अनयो हो अंतः, इन दोनों का अंत। अंत माने रहस्य, द सीक्रेट ऑफ लॉर्ड शिवा, द सीक्रेट ऑफ दैट वेरी प्योर ज्योतिर्लिंगम, उसका जो रहस्य है, उसकी जो वास्तविकता है, यथार्थता है, उसका जो स्वरूप है, वो न तो ब्रह्मा को पता चला और न विष्णु को पता चला। अंत का मतलब एंड भी नहीं है, अंत तो है ही, द एंड वो तो है ही, अंत का अर्थ समाप्ति तो है ही, लेकिन अंत का अर्थ रहस्य भी है। आप क्या कहते हैं, ये हमारे अंतरंग है, अंत अंग अंतरंग है ना, कहते ना ये हमारे अंतरंग है, माने ये ऐसे व्यक्ति जिनके सामने अपना सारा रहस्य प्रकट कर देते हैं। उभयो, इन दोनों का, किसका, जो असत है उसकी सत्ता नहीं होती और जो सत्तावान है उसका कभी अभाव नहीं हो पाता। ना भाव विद्यते सतः ना सतो विद्यते भाव, उभयोरपि दृष्टो हो अंतः अनयो हो तत्वदर्शी भी। तत्वदर्शियों ने इन दोनों के रहस्य को समझा है, लेकिन महाराज ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक ऐसा रहस्य आ गया, ना तो ब्रह्मा की समझ में वो रहस्य आ रहा है और ना विष्णु की समझ में वो रहस्य आ रहा है, क्योंकि अब तक तो दोनों यही समझ रहे थे कि हम ही संसार को उत्पन्न करने वाले हैं, हम ही पालन करने वाले हैं और हम ही संहार। अब लेकिन ये जो ज्योतिषम प्रकट हुआ, इसको तो ना विष्णु ने उत्पन्न किया ना ब्रह्मा ने किया, ये तो बड़ा रहस्य हो गया उनके सामने, बहुत भारी रहस्य हो गया। तो उसके रहस्य को पता लगाने लगे महाराज। तो देखो आप इसको आजकल की भाषा में ऐसा कह सकते, कल हमारे चतुर भाई जी बैठे थे हमारे पास, कहने लगे वो विज्ञान बाहर की ओर खोजता है। देखो वो भी एक विज्ञान है और वो बड़े ईमानदार आदमी है। अभी कितने किलोमीटर तक की उन्होंने गुफा बनाई, जमीन के अंदर गए, लेकिन जाने के बाद ईमानदारी से कह दिया कि हमें नहीं मालूम। बड़े ईमानदार है, बड़े सच्चे हैं। अगर हमारे पास, महात्मा के पास कोई मोबाइल होता और सबके पास नहीं होता, तो क्या कहते मेरा चमत्कार है। हाँ, इन साइंटिस्ट ने उसको चमत्कार नहीं बताया। देखो बड़े ईमानदार हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि विष्णु जी तो अंदर ढूंढने लगे और ब्रह्मा जी, एक ज्ञान और एक विज्ञान। विज्ञान माने विशेष ज्ञान, जो अंदर की ओर जा रहा है वो विज्ञान है। तो एक बाहर की ओर ढूंढने लगे, एक अंदर की ओर ढूंढने लगे। मानो दो आदमी थे, एक संत थे और एक वैज्ञानिक थे। साइंटिस्ट बाहर की ओर ढूंढ रहा है और महात्मा अंदर की ओर ढूंढ रहे हैं। ये वर्तमान की परिभाषा है भाई, ऐसा नहीं इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये नहीं। मैं तो कल बात चली तो फिर दिमाग में आ गई, तो ये बात आपको बता दी। तो ऊपर की ऊपर और देखने लगे तो भी अंत नहीं, और नीचे जाने लगे तो भी अंत नहीं, इसका रहस्य नहीं पता चला। तव ऐश्वर्यम यत्नात् यदुपरि विरिञ्चिर् हरिरथ। विष्णु ने कहा मैं संसार का पालन करता हूं, संसार को उत्पन्न करता हूं, संसार का संहार करता हूं, लेकिन ये कौन है जिसको मैंने उत्पन्न ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा मैं संसार को उत्पन्न करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं संहार करता हूं, लेकिन ये मेरी भी समझ में नहीं आया। तो एक नीचे की ओर गए, एक ऊपर की ओर गए, लेकिन अंत का पता नहीं चला, उसके रहस्य का पता नहीं चला। तव ऐश्वर्यम यत्नाद यदुपरि विरिञ्चिर् हरिरथ, परिच्छेतुम याता वनल मनल स्कंध वपुष। ये जो आपका अनल स्कंध अग्नि ज्योति रूप है, ये दिव्य रूप जो आपने प्रकट किया महाराज, पता नहीं लगा। ततो श्रद्धा भक्ति भर घृणभ्यम
1: भर गुरु घृणाभ्याम गिरीशयत। फिर वो दोनों श्रद्धा संपन्न हो गए। क्या हो गए? श्रद्धा संपन्न हो गए। और जैसे ही श्रद्धा संपन्न हुए तो फिर तो महाराज के आपकी जो भक्ति करते हैं उसका फल नहीं मिलता, अवश्य मिलता है। जैसे ही श्रद्धा संपन्न हुए तो उस ज्योतिर्लिंग में ओम की ध्वनि हुई। क्या ध्वनि हुई? ओम की ध्वनि हुई, ओम की ध्वनि हुई, ओम की ध्वनि। ये ओम ही ज्योतिर्लिंग है। ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंगम, ये ओम ही ज्योतिर्लिंग है। ये नमः शिवाय ही ओम है। नमः शिवाय ओम है, ज्योतिर्लिंग ओम है, ये अव्यक्त ओम है, ये अनादि ओम है, और ये अनंत अंतरहित जो है ये अनंत ओम है, यही ज्योतिर्लिंग है। ओम की ध्वनि हुई। और जैसे आप भागवत में सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं? प्रहलाद को की कथा सुनी आपने? तो प्रहलाद की कथा में भगवान कहां से आए थे? खंभे में ही आए थे ना। सत्यम विधातुम निज वृत्त्य भाषितम व्याप्तिम च। दो बात के लिए भगवान खंभे से प्रकट हुए। एक तो अपने वृत्त यानी अपने सेवक ब्रह्मा जी की बात को सत्य करने के लिए। क्या? कि ब्रह्मा जी ने हरिनाक्ष को वरदान दिया था कि तुम्हारी बनाई हुई किसी भी सृष्टि में मरने वाला, ये बात सिद्ध करने के लिए कि मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से, तो बताओ। और
2: ओम नमः शिवाय।
3: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
2: ओम नमः शिवाय।

0: ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்தோத்திரம் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ பிரத்யக் போதானந்தஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
1: மகாராஜ் கே குச் சுட்குலே பி ஆப்கோ சுனா தே. பெஹலி பாத் மகாராஜ் கா எக் வாக்ய சுனோ. புத்தா வோ ஹை जिसका उत्साह मर गया. लाल मियां जी को देख के लगता है हमें बुढ़ा लगता उनके सामने. बिल्कुल समय सर, जैसे जॉब पे आते हैं तब से आते सेवा करते हैं. बुढ़ा वो है जिसका उत्साह मर गया. महाराज जी दूसरी बात सुनाते थे. किसी ने कहा किसी को, अरे बुढ़े यहां जाओ. उन्होंने कहा जरा भाई प्रेम से बुलाया करो, भूतपूर्व युवान करके बुलाओ. जैसे भूतपूर्व शंकराचार्य होते हैं ना, आजकल वो भी लगा थे अपने नाम के बाद भूतपूर्व शंकराचार्य, वंस अपॉन अ टाइम शंकराचार्य. तो भूतपूर्व युवान करके बुलाया करो. अभी एक बुड्ढे का 100 साल पूरा हो गया तो सब लोग मना रहे थे, वो जिंदा था. बर्थडे उत्सव हुआ तब सब लोगों ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थे, और वो लोग पूछते महाराज आपको कुछ कहना है. बुड्ढा आदमी जल्दी नहीं बोलता, धीरे धीरे बोलता है, इस दुनिया में हमारा कोई दुश्मन नहीं है. इतना बोला, इस दुनिया में मेरा कोई दुश्मन नहीं है. सब लोग ने बहुत ताली बजाई, जैसे हम लोग करते ना थोड़े थोड़े, हम लोग का भी उत्साह बढ़ता है, चलो ताली बजी करके, तो ताली बजाए. उन्होंने कहा मेरी बात पूरी करने दो, बीच में ताली मत बजाओ, जितने मेरे दुश्मन थे सब मर गया, मैं ही बाकी रहा हूं. आज देखो शाम को पावना हमारे गिरीशान जी का दूसरा स्वरूप देखने को मिलेगा. इतने प्रेम से महाराज जी की बधाई गाते हैं. स्वामी जी ने बहुत सुंदर सुनाया, हमको तो लगा हम वृंदावन पहुंच गए. वृंदावन का लटका तो जो आ रहा है वही जानता है. एक दिन मैं गया महाराज जी के साईं के सत्संग में, तो मैं उस समय नित्य बोधता पीला कपड़ा पहनता था, तो मुझे देख के कहने लगे, अरे पीली साड़ी वाली सखी आ जा, ऐसे बोला. मैं तो सहम गया. फिर मुझे बाद में डांटा, तेरे को अच्छा नहीं लगा? मुझे महाराज जी मुझे सखी क्यों कहा आपने? तो कहता है देखो ये भी वेदांत में गड़बड़ है, मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, अभी तक वेदांत क्या पढ़ा तू? एक तो सखी खा फिर डांट भी लगाई. कभी कभी कुछ बोल देते थे, हमको भी डांटते थे. लीना जी जानते हैं
2: आज स्वामी जी का दूसरा नाम पता लग गया.
1: अरे भाई आपके सामने बोलने में डर लगता है. क्या बात कर रहे थे? लेना जी डांटते थे कभी कभी. एक दिन डांटा हमको कुछ बात के लिए, तो मैं कुछ बोला नहीं, मुंह मेरा मौन. गुरु जी को अगर शिक्षा करना है तो मौन हो जाना उनसे, महाराज जी कहते थे, तो मैं मौन हो गया. तो फिर कहते थे दूसरे दिन मुझे, देखो मनाने की ट्रिक उनको आती थी. मैं कुछ बोला और वो बात तो हवा में उड़ गई. तू क्यों पकड़ के बैठा है अभी तक? शब्द हुआ उड़ के चला गया, अब तक क्यों पकड़ के बैठे? एक चुटकुला महाराज जी की सुनाए. हमको आश्चर्य होता है महाराज जी क्या क्या. वृंदावन का लटका ही अलग, वहां जाके ये प्रेम विपुल वाले महाराज जी अलग और वृंदावन वाले अलग, आप याद रखना. मुंबई में तो नगर के लोग है ना, कृष्ण वृंदावन में अलग थे और द्वारका में अलग थे. द्वारका में कोई लीला नहीं है देखना,
2: नहीं किया
1: कोई लीला नहीं किया महाराज जी, सब लीला वृंदावन में की. एक गधा और एक कुत्ता दोनों मित्र थे. ये जोक सुना रहा हूं, कोई कथा नहीं है, जोक सुना रहा हूं. और गधा यार इंडिया में रहा और कुत्ता अमेरिका चला गया, और वापिस आया थोड़े दिनों के बाद, वो तो हंसता कट्टा बढ़िया, और गधा बिल्कुल कांटे जैसा दुबला पतला हो गया था. तो पूछा तो ऐसे कांटा जैसे कैसे जी रहा है, मरा क्यों नहीं, कि खाने पीने नहीं मिलता है? कि एक आशा लगी इसलिए मैं जिंदा हूं. कि कौन सी आशा लगी है? कि जो मेरा मालिक है उसकी लड़की पढ़ती नहीं है, फेल होती जाती है, अब उसने कह रखा है अगर अगली बार तू फेल हो गई तो तेरी शादी इस गधे से कर दूंगी। महाराज जी का जोक सुना रहा हूं। अभी दूसरा, अभी जैसे इन्होंने सुना ना, जहां भी टच है, दो आतंकवादी जा रहे थे कहीं बॉम्ब लगाने के लिए, कार बॉम्ब, उसमें से उन्होंने एक कार में बॉम्ब लगाया तो दूसरा पूछता है, हाथ में दो बॉम्ब थे, एक लगाया तो दूसरा पूछता है कि अगर ये बॉम्ब बीच में फूट गया, हम लोग जब लगा रहे तो क्या होगा, तो दूसरा कहते चिंता क्या करता है, दूसरा बॉम्ब तो है। समझ में आया, बॉम्ब तुम लोग जाके बादाम खाओ और क्या। कभी कभी महाराज श्री मुझे सत्संग में खड़ा कर देते, चुटकुला सुनाओ, सर्वस्वामी जी याद है ना आपको, बिल्कुल ऐसे कहते थे कुछ ना कुछ चुटकुला सुनाओ सरदार साहब को। देखो एक वेदांत में चलता है महाराज जी, अनवस्था दोष रिग्रेशन ऑफ इन्फिनिटम। जैसे हम बात करते हैं कि अगर अंडा है तो अंडा मुर्गी से आया, मुर्गी कहां से आई, अंडे से आई, अंडा कहां से आया, ये बोलते जाओ धीरे धीरे मिल जाएगा, तो पूरी रात बोलो मिल जाएगा। तो ये प्रश्न है, इसको क्या अनवस्था दोष, यू कांट से विच केम फर्स्ट, इन्फिनिट, ये पहले कर्म के पहले शरीर, ये भी गड़बड़ है, कर्म के बिना शरीर नहीं मिल सकता है और शरीर के बिना, तो पहला कौन सा है, ज्योतिष के पास जाते दिखाने के लिए क्या दिखाओगे। तो सरदार को पूछा, सरदार को ये सब नहीं मालूम है, उसको सीधा पूछा, महाराज अंडा पहले कि मुर्गी, तो ये सोचता था ये बोलेगा इन्फिनिट है, ये सब बोलेगा अनवस्था दोष है, तो सरदार जी ने हंस के कहा भाई जो भी तैयार है वो पहले ले आओ। एक दिन एयरपोर्ट में मैं महाराज जी के साथ गया, तो यहां बंबई का ही कोई भगत था, तो महाराज जी का आदत था, हम लोग कभी हाथ पकड़ते थे, स्वरूप दिया ना, ऐसी उष्मा मिलती थी, ऐसा प्रेम मिलता था महाराज जी का, बड़े प्रेम से हाथ पकड़ देते। तो वो सज्जन ने हाथ पकड़ा तो ऐसे महाराज जी ने देख लिया, उसकी हथेली देख ली, वो तत्काल उत्सुक हो गया, क्या है क्या है महाराज जी, ये मेरे हाथ में क्या है। तो महाराज जी ने पूछा कि हाथ ने तूने हाथ बनाया कि हाथ ने तेरे को बनाया, वो बेचारा कुछ समझा नहीं क्या कह रहे थे। ऐसे अहमदाबाद में महाराज जी स्टेशन पे बैठे थे, मैं भी महाराज जी के पास था रेलवे स्टेशन पे, तो मैंने कहा महाराज जी से कि महाराज जी आप जा रहे हैं तो लोग रो रहे हैं, ये बात तो होती थी आप लोग को मालूम है, जब महाराज जी को स्टेशन जाते हैं जैसे अपना आनंद ही जा रहा है, तो मैंने कहा सब लोग रो रहे हैं, तो महाराज जी धीरे से कहते हैं देखो अभी अनाउंसमेंट हो जाए कि गाड़ी 3 घंटे देर से जाएगी, फिर देखो क्या होगा इन लोग का। सब दुख चला जाएगा, 1 मिनट में सब दुख चला जाएगा। मानी महाराज का वैराग्य भी ऐसा था कि कहीं किसी के ये इसमें आने वाले नहीं थे, इतना कह के आनंद उत्सव आनंद ही करना चाहिए, हैप्पी बर्थडे महाराज जी को, इसलिए आनंद के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।
2: अत्यंत मधुर श्रद्धेय स्वामी प्रत्येक बोधानंद जी महाराज ने पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव कराया सभी लोगों को।
3: मुझे स्मरण आ रहा है कि यहां 3 विभूतियां ऐसी बैठी हैं कि महाराज जी की नजरें उनको ढूंढती थी। जब महाराज जी यहां प्रेमपुरी में आते थे सत्संग के लिए तो नित्याभोज जी आए हैं या नहीं ये महाराज जी देख लेते थे। विपुल में जाते थे तो हमारी लीना बहन वहां उपस्थित है या नहीं, और वृंदावन जाते थे तो गिरीश की पढ़ाई कैसी चल रही है, उनका वजन कुछ बढ़ा है या नहीं, बहुत दुबले पतले थे और महाराज के बहुत प्रिय, जब भी महर्षि वृंदावन जाते तो उनको जो स्नेह महर्षि का मिलता था वो हमें अभी तक स्मरण आता है वो एकदम चित्र उपस्थित हो जाता है। हरिओम तत्सत। हरिओम।
2: बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे संस्मरण पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज ने श्रवण करा के महाराज जी की स्मृतियां दिलाई। अब अध्यक्षीय भाषण के पूर्व महाराज श्री जी का जो बहुत सुंदर ग्रंथ है और सभी भक्तों में जो अत्यंत प्रिय है, जो श्री महाराज जी ने स्वयं बता करके लेखन करवाया है, जैसे सोमदत्त जी ने बताया पावन प्रसंग, वो प्रायः पूर्ण हो गया था, पुनर्मुद्रित हुआ है, उसका पुनः लोकार्पण स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज के द्वारा होगा और उसके बाद अध्यक्षीय भाषण।
4: देखा, चश्मा से नहीं देखे तो चश्मा उतर देना।
2: शत साहित्य ट्रस्ट की ओर से आज पूज्य महाराज श्री जी के सभी ग्रंथों पर 20% की छूट दी गई है, ऐसे हमारे ट्रस्टियों ने बताया। आप सभी लोग जरूर उसका लाभ लेंगे।
4: अभी आज लेंगे तो
2: आज
4: ज्यादा होगा ना छूट?
2: आज ज्यादा है तो 20% प्रेमपुरी की तरफ से, 20% सत्साहित की तरफ से, पूरी 40% छूट है आज के दिन।
4: देखो आज ही खरीदना।
2: आज जो भी ग्रंथ लेंगे 40% की छूट है महाराज जी के ग्रंथों पर, आप जरूर उसका लाभ लें। अब हमारे परम श्रद्धे परम विद्वान पूज्य स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज इस आनंद जयंती के पावन पर्व पर हम सभी लोगों को आनंद देंगे। परम श्रद्धे स्वामी श्री उमेशानंद जी महाराज।
5: हरि ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादराय सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।
6: परम श्रद्धेय परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय स्वामी गिरिशानंद जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी पृथक बुद्धानंद जी महाराज एवं अर्चनीय वंदनीय स्वामी क्या चिदंबरानंद जी महाराज चिदंबरानंद एवं स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज एवं श्रद्धेय प्रोग्रामी भक्तों में भक्तों से स्वामी डालमिया जी महाराज, स्वामी डालमिया जी कहेंगे आप क्योंकि स्वामियों को बीच में डालमी बनना पड़ता है ना। डालमिया जी एवं नित्ता नित्ता के स्वामी गिरिशानंद गिरिशानंद दोनों गिरिशानंद ही है, एक गिरिशानंद सरस्वती एक गिरिशानंद पुरी।
2: कह रहे हैं उनके धर्म पत्नी बैठी है यहीं पे।
6: वो पीछे बैठी है ना, वो हमेशा पीछे तो चलेगी ना, आगे थोड़े चलेगी। प्रोग्राम में सज्जनों तथा भक्तिमती माताओं, आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक आनंद उत्सव का है, एक जन्म उत्सव का है। चिदंबरानंद जी जो आए ना, इनका आज जन्म तिथि
4: जन्मोत्सव है ना। हाँ देखा आपने जन्म आपने माना नहीं, बड़ा आनंद आता है। आपने मृत्यु दिन माना तो नहीं, कोई नहीं माना। अभी देखो प्रसंग चला था आनंदोत्सव का, कल आनंद प्रकट क्यों नहीं होता है? श्रुति कहती है आनंदाद्य खुले इमाने भूतानि जायंती आनंदे न जाता ने जीवंती आनंदम बहंती अभिषम विशंती आनंदम ब्रह्म है कि नहीं। सारा संसार आनंद से उत्पन्न हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होता, फिर आनंद क्यों नहीं मिलता? अभी स्वामी गिरिजान जी महाराज ने कहा हमारे बगल में बैठा था रसगुल्ला आनंद, परंतु इनका नाम ना लेने से रसगुल्ला आनंद नाराज होकर पीछे गया, चला गया, उधर चला गया, क्यों हमारा नाम तो लिया नहीं उन्होंने, रसगुल्ला आनंद लिया नहीं, पर उन्होंने आनंद का नाम लिया। कौन? इन्होंने प्रत्येक बुद्धानंद जी ने बहुत से आनंदों का नाम लिया, आखिर में दिया कि नहीं, आनंद मनाया कि नहीं? चुटकी ले जो बताया है ऐसे क्या है, आप ना लो, गिरिजान जी बोला आप ना लो, मैं तो अपने लूंगा, अपने आनंद का स्वरूप आपने बताऊंगा जी। तो उन्होंने रसगुल्ला आनंद का नाम नहीं लिया और एक आनंद का नाम लिया, आपको पता है? तो देखिए सारे संसार आनंद से उत्पन्न होता है, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होता है, आनंद नाम है ब्रह्म का, ब्रह्म का नाम है अखंड सच्चिदानंद रूप, ब्रह्म है। तो यदि ब्रह्म के आनंद का आपको अनुभव नहीं होता, ना होने का कारण क्या है? प्रागट्य नहीं होने का कारण क्या है? आकाश में सूर्य है अभी देखने में नहीं आ रहा, क्या कारण है? अरे सूर्य को ढक दिया किसी ने। ऐसे आपका स्वरूप जो आनंद है उस आनंद का प्रागट्य क्यों नहीं हो रहा है? जब आपका स्वरूप ही आनंद है, परंतु बाहर जब सुसुप्ति अवस्था से जब बाहर आते हैं तो आप कहते हो क्या, मैं आनंद से सोया। जिस आनंद से आपने सुसुप्ति अवस्था में सोया था वो अवस्था आपका जागृत में भी है, आप है कि नहीं जागृत में? जागृत में आप जो है वो सुसुप्ति में आप नहीं थे, और सुसुप्ति में जो आप है वो जागृत में नहीं है। हाँ? जो सुसुप्ति का अनुभव करने वाला, स्वप्न का अनुभव करने वाला आनंद का, और जागृत में भी वही है, फिर भी क्यों नहीं होता है आनंद की अनुभूति? तो शास्त्रकार कहते आनंद की प्राप्ति का आशा छोड़ दो। जब आनंद की प्राप्ति की आशा छोड़ दोगे आनंद मिल जाएगा, और जब तुम आनंद को ढूंढते चलोगे ना तो आनंद नहीं मिलेगा, याद रखना। ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, और ढूंढना छोड़ दोगे तो देखो तो आनंद साक्षात है। ऐसे आनंद की प्राप्ति कैसे होगा? शास्त्रकार कहते हैं तुमने जो है ना सत्संग किया कि नहीं? सत्संग जीवन की धारा को बदल देता है, सत्संग जीवन की धारा को बदल देता है। ये सत्संग जीवन की क्या धारा बदल देता है? सताम संगो ही भेषजम, सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग औषधि है। किसकी औषधि है? भावरोग का औषधि है। संसार रूपी जो रोग है, भावरूपी जो रोग है, ये रोग का औषधि क्या है? सज्जनों का संग। हाँ, तो सताम संगो ही भेषजम। अभी आपने यह सुना है मधुसूदन जी से बोले थे कि हमारा जो जीवन है सत्संग से बदल गया, जीवन के धारा को सत्संग बदल देता है, याद रखना। जीवन की धारा को यदि बदलना है तो आप सत्संग करो। अब वो सत्संग नहीं किया तो क्या संग होगा? कुसंग होगा, असत्संग होगा, याद रखना। तो सत्संग के जो सज्जनों का जो संग है, महापुरुषों का जो संग है, केवल महापुरुष संग ऐसा नहीं समझना, सत्संग है। तो सत्संग जीवन की धारा को बदल देता, मतलब अनादि काल से जो हमारा जीवन की धारा संसार की तरफ बह रहा है, वो धारा को बदल करके ऊपर की तरफ ले जाएगा। ऊपर समझ में ना, ऊपर ऊपर क्या है?
7: पांचवा माला।
4: पांचवा माला ठीक है, क्या वहां रसगुल्ला मिलेगा? पांचवा माला में मिलेगा। देखो ऊपर की तरफ जाएगा जीवन की धारा, है बात। जैसे गंगा आदि नदियों का प्रवाह अनादिकाल से निशि की तरफ जाते, समुद्र की तरफ जाते हैं, वो धारा को बदलना होगा तो क्या करना पड़ेगा? बांध देना पड़ेगा और नहर खोदना पड़ेगा। बांध देने से काम नहीं चलेगा, क्यों? बांध को तोड़ देगा प्रवाह, फिर एक नहर खोदना पड़ेगा। जब नहर खोदोगे तो धारा बदल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अनादि काल से जो हमारे जीवन की धारा संसार की तरफ जा रहा है, वो धारा को बदलना पड़ेगा। धारा को बदल करके ऊपर की तरफ ले जाना पड़ेगा। उधर कहाँ है? ऊर्ध्वमूल भगवान की तरफ ले जाना पड़ेगा। भगवान ऊपर रहता है, क्यों? जब झगड़ा होते ना, हाथ उठाकर क्या बोलती है ऊपर वाला जनता? आप बोलते हैं कि नहीं? अरे भाई कुछ भी डाटे, ऊपर वाला तो जानता है नहीं? नहीं, नहीं। वो एक एक, एक चुटकिला सुना देता हमारे वो प्रत्येक बुधानंद जी। एक बुढ़िया माई है, बुढ़िया माई, उसने दूध पाक बनाया दीपावली के समय, सायंकाल के समय दूध पाक बना करके अपने खटिया के नीचे रखा और सो गया तो नींद आ गई। बुढ़िया के माँ में दांत नहीं था, दांत नहीं होने से कैसा होता जी ओठ? जब सो जाते हैं ना, भीतर बाहर क्या होता है? फू फू कर रहता है। ओठ कैसा करता है देख लेना, किसी सोया हुआ है। इतना में दो चोर आ गया, चोर सामान ढूंढते ढूंढते ढूंढते एक ने कहा देखो खीर बना करके रखे नीचे, हाँ खीर बना करके रखे नीचे खा लो। दूसरा ने कहा ठीक है पहले खीर खाओ फिर काम दूसरा करो, पेट पूजा करो पहले। तो खाने गया था, खीर अभी गर्म थी, ठंडा नहीं हुई थी, तो बुढ़िया सोया था ऐसे हाथ फैला करके सोचे फूकर रहा था। अरे भाई बुढ़िया माँ कहती है बेटा मैं बड़ा कष्ट से खीर बनाई हूँ, अब थोड़ा खीर मेरे को देना, अकेला अकेला मत खाना। मानो ये कह रही हो, तो दूसरा ने उठा करके गरम गरम खीर उसके मुंह में डाल दिया। अरे मर गई रे, मर गई मर गई मर गई, चिल्ला उठी। तो दोनों चोर एक ऊपर जाकर कहीं छिप गया, एक नीचे कहीं छिप गया। इतना में अगल बगल के आदमी आ गए, क्या हुआ मैया तू अकेली रहती है, क्या हुआ कैसे मर गई, क्या हुआ क्यों चिल्लाती है? बोले देख बेटा किसी ने मेरे मुंह में गरम गरम खीर डाल दिया। अरे सायंकाल का समय है, किसने तेरे के मुंह में खीर डालेगा? अरे कोई नहीं आया यहां। तो ढूंढता ढांढता देखा कोई नहीं है, वो तो छिप गया था। जब बुढ़िया को डांटने लगे सब, तो बुढ़िया कहने लगे बेटा मैं झूठ बोलू ना, ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला जानता है। तो ऊपर जो छिपा हुआ था ना, उसने सो मेरे को देख लिया। अरे वहां से बोल पड़ा मैया ऊपर वाला नहीं जानते, नीचे वाला भी जानता है, नीचे वाला भी जानता है, समझे कि नहीं? ऐसे ही समझ लेना, हम लोग तो ऊपर की तरफ ले जाने चाहते ना, ऊपर वाला परमात्मा कहाँ है? सातवां आसमान में, मुसलमानों के जैसे है ना, मुसलमान सातवां आसमान में मानता है खुदा को, और हम क्या मानते?
7: सर्वत्र
4: समूहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रिया है ना बात। भगवान सब में समरूप में रहता है, सब में ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्रह्मयन सर्वभूतानि जंत्रारूढानि माया, सब में रहता है हमारे दृष्टि से, सनातनियों के दृष्टि से। तो इसीलिए मुसलमानों के ईश्वर से कहां रहता है वो मौलवी है ना, मौलवी हज करके आया तो रोजा रख रहा था तो उनको उनको प्यास लगी। मुसलमान जब चार बजे खाते हैं ना, ठोस ठोस करके खाता है, गोश्त खाता है, ऐसा खाएगा दिन भर भूख नहीं लगे, पर उसको प्यास लगता है। जब प्यास लगी सोचा पानी कहाँ पीऊं, दुकान में तब पीने देगा नहीं, कहे मुलवी होकर के हजी होकर क्यों पानी पीने, खता कर रहे हो, रोजा को खता कर रहे हो, कर रहे हो तो क्या करूं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी युक्ति लगा लेता हूं। तो मौलवी ने युक्ति लगाया, घर गया, बीबी से कहा बीबी मेरा लुंगी तो दे। बोले क्या करो रे, बोले आज दरिया में गोसल करूंगा। बोले रोज घर में गोसल, गोसल समझे ना, स्नान को गोसल कहते, रोज घर में गोसल कर आज दरिया में क्यों, क्यों घर में गोसल करते पानी पिएगा बीबी देख लेगी ना, इसलिए दरिया में डुबकी भी लगाऊंगा और पानी भी पीऊंगा, कोई देखेगा नहीं। तो लुंगी लेकर गया दरिया के किनारे, गंगा के किनारे रखा तो डुबकी लगाया, डुबकी लगा करके पानी पिया, एक कांटेदार मच्छी गया, फंस गया गले में कांटेदार मच्छी। जब फंस जाएगा आ मुंह बहा करके बाहर आया तो किसी बोला इधर क्या है, ऐसा करता है क्या है, अरे कैसे मच्छी तुम्हारे गले में फंसा, अरे निकालता सर। तो उसने कांटे काट करके मच्छी निकाला तो कहने लगा या खुदा मैं तो सर तू सातवां आसमान में रहता है, तू पानी के अंदर भी घुस गया, पानी के अंदर भी घुस गया, तू तो सातवां आसमान में रहता है, तो उनका खुदा कहाँ रहता है और आपका भगवान कहाँ रहता है। हमारा भगवान आनंदाब्जी है भी खुलो नहीं, सबके भीतर आनंद के रूप में विराजमान है। आनंदाब्जी खुलो इमानी भूताने जायन्ते आनंदे न जाता ने जीवन्ते आनंदम प्रयन्ति अभिषम भिषंति आनंदम ब्रह्म। ये ब्रह्म ही महाराज जी है, अखंड सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद रूपाय आय न, अखंड सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तवत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो मैं महाराज जी के चरण कमलों में आपने साष्टांग प्रणाम निवेदन करते हुए स्वामी गिरिशान जी है, पृथक बोधानंद जी है, हमारे सिद्धांबरानंद जी है, स्वरूपानंद जी है, सबके चरणों में नमस्कार करते हुए वाणी को यह विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।
8: बोले सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत सुंदर अध्यक्षीय भाषण, आनंदमय हम लोगों ने श्रवण किया। अब हमारे गिरीश भाई इस सभा के आभार के रूप में कुछ अपने शब्द कहेंगे और कुछ सूचनाएं देंगे। आप लोग शांति से बैठें, पांच मिनट का समय और देवें और उसके बाद हमारे ट्रस्टी लोग पहले संतों का सम्मान करेंगे, बाद में आप लोग प्रणाम कर सकते हैं शांतिपूर्वक।
9: हरिओम। आज एक की स्मृति में और एक हमारे सामने मूर्तिमान है महाराज जी चिदम्बरम जी महाराज, दोनों के आज आनंद ही आनंद है। प्रणाम करते हुए महाराज जी का एक बड़ा प्यारा शब्द था, जब भी वो कोई वाक्य बोलते थे महाराज जी को, पाठक जी हमने बहुत सुना है और उनके दर्शन भी किए विपुल में, जब भी वो अपना पूजा पाठ करते थे वहां पर स्पेशल वो रूम बनाया, रूम जैसा बनाया था तो वहां पे भी उनके दर्शन किए। तो जब भी वो प्रवचन करते थे तो बीच में कहते थे भला, अगर और वो बहुत ही सुंदर इससे बोलते थे भला, और वो जो भला भला ये शब्द अगर प्रवचन में आप कभी वीसीडी में सीडी में यह सुने तो लगेगा कि वह हरेक का भला मानकर चाहकर हमारे बीच में हमेशा हमारी भलाई के रूप में ही रहे और उसी तरह से आज बहुत ही सुंदर आनंद के हसगुल्ला जैसे मैंने पहले ही बताया तो वैसी सुंदर बातें संतों से हमने प्रवचन के रूप में और आनंद के रूप में सुनी तो और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो पूरे संत मंडल है यहाँ कई सत्संगी है जो अखंडानंद जी महाराज के दर्शन और यहाँ प्रेमपुरी में सत्संग का भी पूरा लाभ लिया है वह सब यहाँ उपस्थित है विशेष रूप से स्वरूपानंद जी महाराज पाठक जी हरतीर्थ जी महाराज जो भी यहाँ संत और पधारे हुए हैं सबके चरणों में वंदन करते हैं और आप सभी के चरणों में भी वंदन करते हैं क्योंकि आपने कई दफे कई संतों का आनंद यहाँ सुना है करवाया है और आज की आनंद जयंती में ईश्वर हम सबको हर क्षण सत्संग प्रवचन में डूबते रहे और आनंद लेते रहे इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हरिओम
10: ओम नमः शिवाय यू आर लिसनिंग टू shaivam.org रेडियोस 24/7 spiritual channels from shaivam.org. Om Namah Shivaya.
0: Om Namah Shivaya. Dear listeners of shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Mandukya Upanishad presented by Swamini Sri Nishtanandaji Saraswati. Thank you. ओम नमः शिवाय
11: पहले पूर्णतया बुद्धि को समझा देना पड़ता है कि ये शरीर मन और बुद्धि के संघात से मैं कुछ अलग हूँ और वो जो मैं हूँ मेरे ऊपर ही ये सब विकल्प उठ रहे हैं वो ब्रह्मा जो है ये जो विकल्प जो है वो ओंकार स्वरूप है मेरा स्वरूप भी अक्षर ओंकार ही है तो ये आपने अब तक जो सुना मैं जब मेरे बारे में मैं करती हूँ तो आप भी सोचते वक्त अपने बारे में मैं ही कहेंगे ना तो ये जो अपने बारे में आपने सोचा कि मैं त्रिकालातीत हूँ मैं विवेक करने वाला मैं शरीर मन बुद्धि का साक्षी मैं ओम तो ये जो मैं है वो क्या है वो आपका अपना आपा है ये आपा शब्द अपना शब्द ये आत्मा से निकला है हकीकत में वो आत्मा है वो अपभ्रंश होके आपा हो गया अपना हो गया और इसीलिए हम आप कहते हैं ये और शब्द है ये आत्मा का सूचक है तो ये है आपका आत्मा आप सबका एक एक करके आत्मा कहना है तो उसको मैं क्या और शब्द और समझा और अच्छी तरह समझाने के लिए मैं क्या कहूंगी प्रत्यगात्मा हाँ आप सबका अपना प्रत्यगात्मा वही आत्मा तो यहाँ सर्वम ही एतद् ब्रह्म अब ये सर्व शब्द जो है वो कहाँ पे पहले सुना था कितने साल पहले सुना था ये सर्व शब्द जो है मैं आपको इतना ही पूछ रही हूँ ये सर्व शब्द जो है वो आपने कहाँ सुना था कितने साल पहले सुना था और वो क्या है ये सर्व शब्द के बारे में ब्रह्म के बारे में कहाँ पूछ रही हूँ वो तो वो नहीं नहीं आप सबने एक साथ सुना है इंडिपेंडेंट की सर्व सुना है वो नहीं आप सर्व ने सुना है सबने हाँ क्या बराबर है ये सुना कह रहा जाता है पहले मंत्र में दो मिनट के पहले बराबर घड़ी में डिजिटल वॉच है दो मिनट के पहले सर्व शब्द हमने सबने सुना है उपनिषद जब शब्द की बात कर रहे हैं तो पहले उसके बारे में बताया ही गया है तो ही ये कहते हैं उसके संदर्भ में तो ये वो जो पहले सर्व सुना ना उसके संदर्भ में ये है भाई तो सर्व यानी क्या तो ओम इति एतद इदगम सर्वम ठीक है तो ये ओम है अक्षर ये बाजू है आत्मा अक्षर परब्रह्म ये ओम है ये इदगम सर्वम ये सर्व है ओम इज इक्वल टू सर्व है ना अब ये सर्व की व्याख्या दे रहे हैं। ओम क्या है? ओम जो है वो सर्व है। हाँ, अब ये सर्व क्या है? अभी उसकी व्याख्या दे रहे हैं। समझ में आया उपनिषद? अभी हम कहाँ तक है? ओम सर्व है ऐसा पहले मंत्र से जाना, अब सर्व की व्याख्या दे रहे हैं। चलो हम भी जानेंगे सर्व की व्याख्या उपनिषद क्या दे रहे हैं। तो भाई यहाँ कहा सर्वम ही यानी निश्चित ही। यहाँ हम स्टेटमेंट ही कर रहे हैं, हम बता ही रहे हैं। आपको नहीं समझ में आए तब तक आप समझने का प्रयत्न कीजिए, पर ये नहीं फिरने वाला है। निश्चित ही ये जो सर्व जो मैंने कहा वो क्या सर्व? जिसके जिसके नाम है, जिसके जिसके विकल्प है, जो विकारवान है, हाँ वो क्या है? ही एतद, ये यानी क्या? कौन सा ये? जिसके बारे में हम बाद में बताने वाले हैं, वो जो तीनों कालों में है, वो जो तीनों कालों के पर है, ये यानी एतद। एतद शब्द की व्याख्या भी आगे आ गई। कौन सी व्याख्या? एतद यानी ये, यह। तो यह यानी क्या? तो बोले यच्च अन्यत् त्रिकालातीतम्, और तीनों कालों में जो है वो एतद, वो क्या है? ब्रह्म। ओहो हो, ऐसा ही लिखा है ना? सर्वम ही एतद् ब्रह्म। अब पूरा वाक्य ले लो एक साथ। ओम इज इक्वल टू सर्व, सर्व इज इक्वल टू क्या? ब्रह्म। एतद् ब्रह्म, एतद् याने पर अपर दोनों आ गए। एतद् याने भूत भविष्य वर्तमान में विजृंभण करने वाला, तीनों अवस्था को जानने वाला, तीनों अवस्था का साक्षी, तीनों अवस्था के भोग को जानने वाला, और जो अवस्था त्रय साक्षी, जो वो तुरीय है, ये दोनों का मिश्रण कर दिया, उसे ओम कहते हैं। बात बराबर समझ में आई? मिश्रित करके जो पूरा एक जुम्बण, ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा रज्जु जो है, वो पूरा का पूरा रज्जु जर्ब सर्प में, पानी की लकीर में, लकड़ी में, ओतप्रोत एक हो जाता है, पूरा एक बंडल। तो ये रज्जु कहते हैं, पर रज्जु के अंदर, रज्जु जहां जहां जाता है, ये तीन पॉसिबिलिटी जो है ना, उसके साथ ही फिरती है। दिखे या नहीं दिखे वो अलग बात है, ये पॉसिबिलिटी जो है वो उसके साथ ही होती है। इसी प्रकार ब्रह्म जो है ठोस, वो अजन्म है, पर उसके भीतर सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और लय का पोटेंशियल तो है ही। देख, जैसे हमारे पॉकेट में हम बीज को लेके घूमेंगे, आम का जो, आम की जो गुठली होती है, नीम के पेड़ का जो बीज होता है, वट वृक्ष का जो बीज होता है, उसे हम पॉकेट में लेके घूमेंगे, तो क्या है? वृक्ष है उसमें। भाई वृक्ष है पर दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है इसलिए नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे हाथ में है, वृक्ष है, तो अभिव्यक्त है। अभी अभिव्यक्त नहीं हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं है कि अभिव्यक्ति नहीं है। उसके भीतर तीनों संस्कार, सब वृक्ष के संस्कार है, डाली के संस्कार है, सब वो फल के स्वाद के संस्कार भी ये छोटे से बीज में है। अपने स्वरूप में दिख नहीं रहा है, पर पोटेंशियल तो है ही। इसी प्रकार ये जो ब्रह्म है उसमें सब कुछ है। क्योंकि हम सब बोलेंगे कि सब कुछ है, तो आप बोलेंगे कि अगर सब कुछ है तो दिखाओ। बोले नहीं, ये बीजात्मक संस्कार रूप भीतर तो है ही। तो ये जो, जिसके अंदर बीजात्मक संस्कार रूप जो है, उसे हम ब्रह्म कहते हैं, ठोस। तो ये जो ओम है वो सर्व है, वो ब्रह्म है। तो अभी चार चीज आ गई हमारे पास। पहले अक्षर कहा, हाँ, फिर ओम कहा, ओम इति एतद् अक्षरम इदगम सर्वम, फिर सर्व का नाम आया, फिर ये जो सर्व है उसे ब्रह्म का नाम दे दिया। ये चार चीजें आ गई। अब क्या करना है? अब ऐक्य तो महावाक्य का एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भाई सर्वत्र ये जो ब्रह्म जो है वही मैं हूँ, जीव ब्रह्म का ऐक्य ही उसका अंतिम उद्देश्य है। अब ये सर्व में, इदम में, अक्षर में, ब्रह्म में मैं कहाँ हूँ? अब मेरे बारे में तो कुछ कहना चाहिए ना उपनिषद में, नहीं तो ये मुझे पढ़ने की और पढ़ाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो बोले ऐसा नहीं है, वो शिष्य उठ के चला जाए, उसके पहले गुरु बोलते हैं पूरा वाक्य तो सुन, आगे क्या कहा है मैंने, तो बोले अयम आत्मा ब्रह्म अयम। अब तू सुन, अब तेरे बारे में कह रहा हूं। अयम याने तो तेरे भीतर जो आत्मा है, अयम याने जो प्रत्येक आत्मा है, अयम याने जिसको तूने अक्षर माना, अयम याने जो जानने वाला है इन विकारों को, जो इन तीन अवस्थाओं को जानने वाला है, जो इन तीन अवस्था को देख सकता है, इसलिए उसके दूर है, उसका साक्षी है। ये जो तेरा अयम जो आत्मा जो है, जो तेरा अहम जो है, जो आत्मा प्रत्येक आत्मा है, वो क्या है भाई? अयम आत्मा सर्व कहा, विश्व कहा, जगत कहा, हाँ ओम कहा, अक्षर क्या कहा? अयम आत्मा ब्रह्म, ये ऐक्य है, ये जीव ब्रह्म ऐक्य है, ये ऐक्य वाक्य है। अयम आत्मा, ये प्रत्येक आत्मा, ओ जीवात्मा, ओ प्रत्येक आत्मा, जो तूने जान लिया है, ये जो आत्मा वो क्या है भाई? वही ब्रह्म है। ब्रह्म कुछ और नहीं है। अब फिर से पीछे आ जाओ कि ब्रह्म अब क्या है? अरे ये ब्रह्म मैं हूं। अब क्या हो गया? देखिए अब जिज्ञासा का विषय बढ़ गया। अब आपके सबके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई कि अभी ये मेरी बात है। अब फिर से जरा बता दो ये ब्रह्म क्या है, क्योंकि ये तो अभी मैं हूं। अब फिर से बता दो। कोई ऐसी कोई चीज रखी होगी तो आप इतना सुकून, इतना इंटरेस्ट नहीं देखेंगे, पर बोलेंगे ये तो सूट आपके लिए है। हाँ अब थोड़ा इंटरेस्ट से देखेंगे, अब थोड़ा छुएंगे कि भाई मेरे लिए है। अब उसके ऊपर धूल नहीं पड़नी चाहिए। हाँ अब तक आप उसके ऊपर पैर रख के चले गए, कोई अर्ज नहीं। और तेरे लिए है तो अरे अब तो सर पे रखो, ये मेरी बात है, क्यों बिगाड़ दिया? हाँ तो ऐसे अब कहते हैं कि अयम आत्मा ब्रह्म। तो अब फिर से बताओ कि ये ब्रह्म याने क्या है? फिर से बता देते हैं सर्वम। ये ब्रह्म याने क्या? ये आत्मा, ये मैं कौन हूँ? मैं सर्व हूँ। मैं कैसा सर्व हूँ? तो बोले कि ओम इति एतत् अक्षरम इदगम सर्वम, इदम इदम रूप से जाना जाता हुआ सब कुछ आकाश से लेकर यहाँ तक का मैं ही हूँ। अब किसके बारे में? हाँ किसके बारे में संतप्त होंगे आप? किसको पाएंगे? किसको पाने की कोशिश करेंगे? किसको छोड़ने की कोशिश करेंगे? किससे राग करेंगे? किससे द्वेष करेंगे? ये सब कुछ आप ही है। हाँ यू आर मेड द सम्राट, द मोनार्क ऑफ एवरीथिंग। अब क्या चाहिए? हाँ शरीरम यह निष्काम अकम, ये जो परमात्मा को जिसने जान लिया, आत्मानम चेद विजानियात अयम अस्मि इति पुरुषः, अयम अस्मि ये पुरुष मैं हूँ, ऐसा चेद विजानियात, ऐसा जिसने जान लिया आत्मानम, ये आत्मा को अहम प्रत्यय से मैं ही हूँ ऐसा जान लिया। किम इच्छन तस्य कामाय, कौन सी इच्छा से, कौन सी कामना से शरीरम अनुसंजरेत, कहाँ पे भगाएगा ये शरीर को, क्यों संतप्त होगा? आनंद से मजा ही करो, क्यों रुक रहे हो? ये पता नहीं है इसलिए, ये सीक्रेट पता नहीं है इसलिए, ये आनंद भीतर पड़ा ही है। हम आनंदित होना ही चाहते हैं, हर क्षण हमारी एक ही इच्छा है कि हम आनंदित हो, हर क्षण यही इच्छा है, और यही आनंद का द्वार है। आनंद अपने द्वार से ही निकलना चाहिए ना, द्वार बराबर नहीं हो तो आनंद निकलेगा नहीं उससे, द्वार उसके नाप का ही होना चाहिए। अभी गौशाला बनाई है तो गौशाला में दो द्वार होते हैं, एक में से आपको जाना है, जो आदमी जो खाना देने वाला होता है वो आता जाता रहता है, और एक में से गौ बाहर निकलती है। हाथी पाला है तो हाथी बाहर निकलेगा, तो हाथी के लिए कौन सा द्वार चाहिए? उसी के लिए बनाया गया उचित द्वार चाहिए, उसमें स्टेप्स नहीं चाहिए, उसमें स्लोप होना चाहिए। उसका जो द्वार बना है वो अच्छी सीमेंट से बनाया हुआ होता है, हमारे और हाथी के वजन में फर्क है। उसका उचित द्वार जब उसको मिलेगा तभी उससे से बाहर निकल सकेगा। ये जो भीतर का आनंद है बाहर निकलना चाहता है, पर वो भीतर के आनंद को हम कहां से बाहर निकाला? चक्षु इंद्रिय से बाहर निकाला, पर्याप्त द्वार नहीं है भाई। ये तो बड़ा आनंद है भीतर बैठा होगा, उससे चक्षु इंद्रिय कम पड़ती है, कम पड़ती है यानी चक्षु इंद्रिय से ये रूप में देखूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा। सुकून की इच्छा, आनंद की इच्छा भीतर है, पर उसको करण क्या दे दिया? इतने बड़े ब्रह्म को करण क्या दे दिया? ये चक्षु इंद्रिय के ले थोड़े रूप देख ले, भीख नहीं देनी है उसे, कह रहे थोड़ा रूप देख ले और खुश हो जा। कभी भी उसे कोई रूप अच्छा बुरा नहीं दिखाना, तो ऐसा सोच के आप रूप की इच्छा से पर हो जाएंगे। हाँ, एक वन फाइन आइडियल डे रूप की इच्छा से मैं पर हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा सोचिए मैं किसे दे रहा हूं ये। ये थोड़ा तू सुन ले, क्या सुनना है भाई? मेरा मान, मेरी प्रतिष्ठा के बारे में मुझे सब मैं सुनूंगी तो ही मुझे आनंद आएगा। ये ले ब्रह्म, थोड़ी तू अपनी बातें सुन ले तो तू आनंदित होगा। तो ये द्वार भी कम पड़ गया, ये द्वार से भी वो नहीं निकल सकता। वाणी का द्वार तो बोले अवांग अमरसा गोचरम, बंद कर दिया, ताला लगा दिया उपनिषदों ने, ये द्वार ही नहीं है। तो अब कौन सा द्वार? ज्ञान प्रसाद, वो द्वार की बात भी करते हैं। अगर अंदर आनंद है ना तो द्वार है ही। कौन सा द्वार है, कैसे जाना जा सकता है? ये आनंद की अभिव्यक्ति कहां से होगी, मुझे कहां से दिखेगा? तो बोले ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व ततस्तु तम पश्यति ध्यायमानः। जब ध्यान में बैठते हैं आप, यदि ध्यान के बाद का ध्यान की बात है, ध्यान का प्रयत्न नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, ध्यान किया नहीं जाता, पर बोलने के लिए कहा जाता है ध्यान, बहुत बड़ी चीज है। ज्ञान प्रसाद विशुद्ध सत्व, ज्ञान रूपी प्रसाद, ये ज्ञान रूपी प्रसाद जब आपने पा लिया है, श्रवणात्मक ज्ञान, मननात्मक ज्ञान, निधिध्यासनात्मक ज्ञान, उसके प्रसाद से, वो प्रसाद से, प्रसाद यानी चित्त शुद्ध रूप प्रसाद, चित्त संतोष रूप प्रसाद। चित्त की शुद्धि यानी क्या बता दे आपको? चित्त यानी देखिए अंतकरण के चार फंक्शनल डिफरेंस है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो शुद्धि यानी क्या? अंतकरण जब शुद्धि यानी कोई जो अशुद्धि है उसका निकल जाना, उसे शुद्धि कहते हैं। भाई कमरा साफ कर दो, तो कमरा साफ करने का मीनिंग ऐसा है कि कमरे को भी साफ कर दो। हाँ, कमरा साफ करो यानी क्या? कमरा साफ करो का आइडियल ये पूरा, अगर मैं ये शब्द से शब्द आप जाओ तो कमरा भी चला जाना चाहिए, कमरे को भी साफ कर दो। तो बोले कमरा साफ कर दो यानी कमरे को साफ कर दो, कमरे भी चला जाए, ऐसा नहीं। अंतकरण को साफ करो, अंतकरण को शुद्ध करो यानी अंतकरण पूरा चला जाए, नहीं नहीं तो ये ज्ञान की वृत्ति कहाँ होगी? अब तक तो आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है, और इसीलिए अंतकरण शुद्धि यानी ये अंतकरण में से कुछ जो है वो चला जाए, जो अशुद्धि। क्या अशुद्धि है? तो अंत

ऋषयः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शांति शांति शांति। आंखें बंद रखिए सब लोग।

उपनिषद के जो मंत्र है, जो वाक्य है, वो अपनी वो निश्चित ब्रह्म स्वरूप ही है और वो ब्रह्म सब कुछ जानता है। उसके मान सम्मान में कुछ भी अनपेक्षित हो वो चला नहीं लेता है। इसीलिए प्रार्थना की जाती है, शांति पाठ किया जाता है, पूरे दिन अच्छी तरह शांति पाठ प्रार्थना करना, तो उसी के फलस्वरूप ये उपनिषद अपने आप को अनावृत करने के लिए फिर से हमें शक्ति प्रदान करेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।

आंखें बंद रखिए। कल जो हमने छोटा प्रयोग किया था वही प्रयोग को दोहराएंगे। उसके बाद मौन रख के आप अपनी जो भी प्रवृत्ति है उसमें जुट जाना। मैं ओंकार का उच्चारण करूंगी, उसके बाद आप करेंगे। कल जो ओंकार के बारे में आपको ध्यान देने बोला था, अब वही ओंकार, यही मेरा स्वात्मा है, यही ब्रह्म है। अब थोड़ी विचार में शुद्धि आ गई और यही ओंकार, जब ओंकार का ध्वनि शांत हो जाता है तब यही ओंकार, कल आपने जो ध्यान दिया था तो सिर्फ एक खाली जगह, एक शांति मिली थी, आज वो शांति की व्याख्या हमने देख ली। वो क्या है? वही ब्रह्म है जो त्रिकालातीत है। और वो क्या है? तो वो मैं ही हूँ। ये जो स्वरूप है वो मेरे भीतर ही है, ये ब्रह्म जो है मेरे भीतर ही है। जब भी मिलेगा, इसी देश, जो भी काल में आपको वो प्राप्त होगा, आपके पास ही है, यही होगा। ओंकार के माध्यम से इसे जाना जा सकता है। तो मैं अब उच्चारण करूंगी, आप उच्चारण करना, बाद में मैं शांति पाठ करके समापन करूंगी।

ओमकार का जब मैंने ध्वनि किया, ध्वनि के ऊपर ध्यान देने वाला मैं ही था। ध्वनि के समापन के बाद जो अक्षर है, अशब्द है, उसके ऊपर भी ध्यान देने वाला मैं ही हूं।

यानी ओंकार के ध्वनि के उच्चारण को अनुच्चारण को दोनों को जानने वाला। उसका साक्षी, उसका दृष्टा, उसका ज्ञाता मैं ही हूँ। ओंकार के ही माध्यम से मैंने ये ओंकार का जो पर और अपर जो स्वरूप है, उससे परस्पर जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म ये ओंकार के उच्चारण का साक्षी, ओंकार के अनुच्चारण का भी साक्षी हो सका। निश्चित मेरे भीतर वो साक्षी है। अब उच्चारण के ऊपर, उच्चारण के बाद के अनुच्चारण के ऊपर, और जो ये दोनों को देख रहा है सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देना।

0: ये जो अब इसी क्षण है वही आपका सत्य ब्रह्म स्वरूप है। इसी क्षण में नितराम प्रस्थापित रहे, ऐसी ही परमात्मा और गुरुजनों से प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.

निषे व्यमानं पिशिताशनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शंकरं भक्तहितं नमामि। श्रीताम्रपर्णी जलराशियोगे निबध्य सेतुं निशिबिल्वपत्रैः।

0: अथ संसार दुःख गहनान् जगदीश रक्ष वाराणसी पुरपते मणिकर्णिकेश वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश सर्वज्ञ सर्वहृदयैक निवासनाथ संसार दुःख गहनान् जगदीश रक्ष श्रीमन् महेश्वर कृपामय हे दयालो हे व्योमकेश शितिकंठ गणाधिनाथ भस्मांगराग नृकपाल कलापमाल संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष कैलास शैल विनिवास वृषा कपेहे मृत्युंजय त्रिनयन त्रिजगन्निवास नारायण प्रिय मदापह शक्तिनाथ संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष विश्वेश विश्वभवनाशक विश्वरूप विश्वात्मक त्रिभुवनैक गुणाधिकेश हे विश्वनाथ करुणामय दीन बंधो संसार दुःख गहना जगदीश रक्ष गौरी विलास भवनाय महेश्वराय पंचाननाय शरणागत कल्पकाय शर्वाय सर्व जगतामधिपाय तस्मै दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। इति श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्याणां श्री गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्याणां श्रीमच्छंकर भगवतां कृतौ शिवनामावल्यष्टकं संपूर्णं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियोस 24/7 स्पिरिचुअल चैनल्स फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, you are about to listen Shiva Stotras. The title is Shiva Panchakshara Nakshatra Mala Stotram of Sri Adi Shankaracharya, presented by Dr. M. Gokula Krishna Iyer. Thank you. Om Namah Shivaya.
0: Srimad Shankara Bhagavat Pada Rachitam Shiva Panchakshara Nakshatra Mala Stotram श्रीमदात्मने गुणैक सिंधवे नमः शिवाय। धामलेश धूतकोक बंधवे नमः शिवाय। नामशेषिता नमद्भवान्धवे नमः शिवाय। पामरेतर प्रधान बंधवे नमः शिवाय। कालभीत विप्रबाल पालते नमः शिवाय। शूलभिन्न दुष्ट दक्ष फालते नमः शिवाय। मूल कारणाय काल कालते नमः शिवाय। पालयाधुना दयाल वालते नमः शिवाय। इष्ट वस्तु मुख्य दान हेतवे नमः शिवाय। दुष्ट दैत्य वंश धूम केतवे नमः शिवाय। सृष्टि रक्षणाय धर्म सेतवे नमः शिवाय। अष्टमूर्तये वृषेन्द्र केतवे नमः शिवाय।

0: मंदहासिने नमः शिवाय, राजकोरकावतं सभासिने नमः शिवाय, राजराजमित्रता प्रकाशिने नमः शिवाय, दीनमानवालिका मधेनवे नमः शिवाय, सूनबाणदाहकृत्कृशानवे नमः शिवाय, स्वानुरागभक्तरत्नसानवे नमः शिवाय, दानवान्धकारचण्डभानवे नमः शिवाय, सर्वमङ्गलाकुचाग्रशायिने नमः शिवाय, सर्वदेवतागणातिशायिने नमः शिवाय, पूर्वदेवनाशसंविधायिने नमः शिवाय, सर्वमन्मनोजभङ्गदायिने नमः शिवाय, तोकभक्तितोपि भक्तपोषिणे नमः शिवाय, माकरन्दसारवर्षिभाषिणे नमः शिवाय, एकबिल्वदानतोपि तोषिणे नमः शिवाय, नैकजन्मपापजालशोषिणे नमः शिवाय, सर्वजीवरक्षणैकशीलिने नमः शिवाय, पार्वतीप्रियाय भक्तपालिने नमः शिवाय, दुर्विदग्धदैत्यसैन्यधारिणे नमः शिवाय, शर्वरीशधारिणे कपालिने नमः शिवाय, पाहि मामुमामनोज्ञदेहते नमः शिवाय, देहि मे वरं सीताद्रिगेहते नमः शिवाय, मोहितर्षिकामिनी समूहते नमः शिवाय, स्वेहितप्रसन्नकामदोहते नमः शिवाय, मङ्गलप्रदाय गोतुरङ्गते नमः शिवाय, गङ्गयातरङ्गितोत्तमाङ्गते नमः शिवाय, सङ्गरप्रवृत्तवैरिभङ्गते नमः शिवाय, अङ्गजारयेकरेकुरङ्गते नमः शिवाय, इहितक्षणप्रदानहेतवे नमः शिवाय, आहिताग्निपालकोक्षकेतवे नमः शिवाय, देहकान्तिधूतरौप्यधातवे नमः शिवाय, गेहदुःखपुञ्जधूमकेतवे नमः शिवाय, त्र्यक्षदीनसत्कृपाकटाक्षते नमः शिवाय, दक्षसप्ततन्तुनाशदक्षते नमः शिवाय, ऋक्षराजभानुपावकाक्षते नमः शिवाय, रक्ष मां प्रपन्नमात्ररक्षते नमः शिवाय, न्यङ्कुपाणये शिवङ्कराय ते नमः शिवाय, सङ्कटाब्धितीर्णकिङ्कराय ते नमः शिवाय, कङ्कभीषिताभयङ्कराय ते नमः शिवाय, पङ्कजाननाय शङ्कराय ते नमः शिवाय, कर्मपाशनाशनीलकण्ठते नमः शिवाय, शर्मदाय नर्यभस्मकण्ठते नमः शिवाय, निर्ममर्षिसेवितोपकण्ठते नमः शिवाय, कुर्महेनतीर्णमद्विकुण्ठते नमः शिवाय, विष्टपाधिपाय नम्रविष्णवे नमः शिवाय, शिष्टविप्रहृद्गुहाचरिष्णवे नमः शिवाय, इष्टवस्तुनित्यतुष्टजिष्णवे नमः शिवाय, कष्टनाशनाय लोकजिष्णवे नमः शिवाय, अप्रमेयदिव्यसुप्रभावते नमः शिवाय, सत्प्रपन्नरक्षणस्वभावते नमः शिवाय, स्वप्रकाशनिस्तुलानुभावते नमः शिवाय, विप्रडिम्भदर्शितार्द्रभावते नमः शिवाय, सेवकाय मे मृडप्रसीदते नमः शिवाय, भावलभ्यतावकप्रसादते नमः शिवाय, पावकाक्षदेवपूज्यपादते नमः शिवाय, तावकाङ्घ्रिभक्तदत्तमोदते नमः शिवाय, भुक्तिमुक्तिदिव्यभोगदायिने नमः शिवाय, शक्तिकल्पितप्रपञ्चभागिने नमः शिवाय, भक्तसङ्कटापहारयोगिने नमः शिवाय, युक्तसन्मनःसरोजयोगिने नमः शिवाय, अन्तकान्तकाय पापहारिणे नमः शिवाय, शान्तमाय दान्तिचर्मधारिणे नमः शिवाय, सन्तताश्रितव्यथाविदारिणे नमः शिवाय, जन्तुतातनित्यसौख्यकारिणे नमः शिवाय, शूलिने नमो नमः कपालिने नमः शिवाय, पालिने विरिञ्चितुण्डमालिने नमः शिवाय, लीलिने विशेषरुण्डमालिने नमः शिवाय, शीलिने नमः प्रपुण्यशालिने नमः शिवाय, शिवपञ्चाक्षरमुद्रां चतुष्पदोल्लासपद्यमणिघटितां नक्षत्रमालिकामिह दधदुपकण्ठं नरो भवेत् सोमः। इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्याणां श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्याणां श्रीमच्छङ्करभगवतां कृतौ शिवपञ्चाक्षरनक्षत्रमालास्तोत्रं सम्पूर्णम्।
1: Om Namah Shivaya. Dear users of Shaivam.org, we are very much delighted to let you all know that due to the shower of grace from Almighty Lord Shiva and the continuous support from esteemed users like you, Our Shaivam.org website had passed 26 successful years of service in the world of Shaivam, and it is all set to sustain the same with lot more new features in the forthcoming years as well. Adding to that, like one more diamond embedded to the golden crown, we are pleased to inform the existence of a new radio, Shiva Tattvam, specifically designed to telecast Shaiva discourses. It's a humble request to you to listen that as well and extend your support. Now you can listen all the Shaiva discourses being scheduled in Shaivalahari and Thiruneriya Tamilosi radios in Shiva Tattvam radio only. Thanks for your esteemed support. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Shukla Yajurvedam, Madhyandina Shaka, Adhyayam 19.

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।

0: चंद्र से खर रक्षमा। ओम ओम ओम। प्रेमपुरी आश्रम आयोजित तथा दैया परिवार द्वारा प्रायोजित गीता चिंतन माला के अंतर्गत सायंकालीन ये प्रवचन का कार्यक्रम कल 16 तारीख से शुरू हुआ और ये 29 तारीख तक चलेगा। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी द्वारा विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर ये प्रवचन माला चिंतन माला 3 वर्ष पहले आरंभ हुई थी। 100 श्लोक का यह शिवानंद लहरी स्तोत्र है। गत वर्ष तक के चिंतन के क्रम में 66 श्लोक तक का चिंतन किया था और उसी के बाद के श्लोकों पर विचार आरंभ किया। कल 2 श्लोकों पर विचार हुआ, आज 69वां श्लोक 69 इस पर हम विचार करेंगे कि शंकराचार्य जी भगवान शिव जी से कौन सा भाव व्यक्त करते हैं, किस प्रकार का भाव अपने व्यक्त करते हैं। हमने कल कहा था कि स्तुति प्रार्थना भाव प्रदान होता है, प्रार्थना भावना से की जाती है, शब्द और भावना, तो भावना की अभिव्यक्ति शब्दों के माध्यम से होता है। महात्मा लोग कहते हैं शब्द तो साधारण व्यक्ति भी सुन लेता है, तो साधारण व्यक्ति और परमात्मा में यही अंतर है कि परमात्मा भावना को भी सुनता है, निःशब्द भावना को भी सुनने की क्षमता परमात्मा में है। तो ये श्लोक के द्वारा भगवान शंकराचार्य जी किस प्रकार की भावना व्यक्त करते हैं अभ्यास करें। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचरत्वं च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौले भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम्। अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूर्ति अगणित फलदायक प्रभुर्मे। जगदधिको हृदि राजसे कुरोस्ति अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्ध्या वरिवसितुं सुलभ प्रसन्न मूर्ति। अगणित फलदायक प्रभुर्मे। जगदधिकोरिधि राजशेखरोऽस्ति अरहसि रहसि स्वतंत्र बुद्धिया। भगवान शंकराचार्य जी, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव से कहते हैं कि महाराज, आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? मेरा तिरस्कार आप क्यों कर रहे हैं? मुझे क्यों नहीं स्वीकार करते? जहां तक है कि मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, हर व्यक्ति अपना मूल्यांकन अपने आप करे वो गलत है। व्यक्ति के मूल्यांकन कोई दूसरा करे तो वो सही होता है। अपने आप को महान व्यक्ति तो हर व्यक्ति कहेगा, दूसरा व्यक्ति तुम्हें महान कहता है कि नहीं इस पर निर्भर करता है तुम्हारी महानता में। अपने आप को महानता तो हर व्यक्ति कहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, मुझमें बहुत सी कमी कमजोरियां हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं हूं। मुझे लगता है कि आपके अनुग्रह का पात्र मैं बन सकता हूं, लेकिन आज तक आपके अनुग्रह का पात्र क्यों नहीं बना? तीन चार चीज को यहां प्रस्तुत किया है, जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वम, ये चार चीज है। जहां तक कि मुझ में ये चार भाव नहीं है, जड़त भाव भी नहीं, मैं इंसान हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं जीवंत हूं, मैं जड़ नहीं हूं। और ये मैं गारंटी नहीं कर सकता हूं कि मैं बिल्कुल ही जड़ नहीं हूं, जड़ हो सकता हूं, जड़ भी हो सकता हूं, लेकिन इतनी मात्रा से आप मुझे परित्याग कर दें, स्वीकार न करें, तिरस्कार करें, ये गलत है। और मैं ये भी जानता हूं कि मैं इंसान हूं, पशु तो नहीं हूं। शायद विषयों के प्रति आसक्त होने के कारण या अपने ही कर्म बंधन से बंधे हुए के कारण कुछ पशु भाव मुझमें भी हो सकते हैं। पशुता सर्वथा पशुता नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता हूं। मुझमें कुछ बंधन है और शायद उन्हीं बंधनों के चलते मैं मुझमें पशुता हो सकती है, लेकिन इतनी मात्र से आपके द्वारा मैं सर्वथा तिरस्कृत हूं, आप मुझे सर्वथा तिरस्कार कर दें, ये बात तो नहीं जचती है। कलंकिता तीसरा भाव है, जहां तक ख्याल है कि मुझे कि जीवन में मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया। कहने के लिए तो हर इंसान ये कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, गलत काम करते हुए भी वो यही कहता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं की है, क्योंकि अपने कर्मों का मूल्यांकन जो है वो अपनी वासना से प्रेरित होकर करता है। हम कभी किसी को कहते हैं, व्यापारियों को कहते हैं कि तुम ईमानदारी से व्यापार करो, तो व्यापारी जवाब देते हैं, महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं, और सारी दुनिया ये जानती है कि व्यापारी कितनी ईमानदारी से व्यापार करते हैं। हर व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे तो समाज में कोई मिलावट नहीं हो सकती है। लेकिन आज समाज में कोई सामान खरीदने जाओ तो हर सामान में मिलावट मिलता है। शुद्ध वस्तु मिलना तो आजकल असंभव हो गया। और हर व्यापारी को कहो कि ईमानदारी से व्यापारी क्या करो, बोले महाराज हम बड़े ईमानदारी से व्यापार करते हैं। अब उसी के सामने कहा कि ये देखो तुम्हारी ईमानदारी, इसमें ये मिलावट की है, ये गड़बड़ी किया है। तो बड़ी शालीनता से, मधुर भाषा से, बड़े शिष्ट भाषा से जवाब देता है, महाराज थोड़ा बहुत तो इस जमाने में करना ही पड़ता है। बड़ी शालीनता से जवाब देता है, विनम्रता से जवाब देता है। ये थोड़े बहुत नीचे ऊपर न करो, इधर उधर न करो तो महाराज चलेगा ही नहीं जमाना में। आज के जमाने में ये सब करना ही पड़ता है। अपने कर्म को इस तरह वेरिफिकेशन कर रहा है, बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि मैं शुद्ध ईमानदारी से काम कर रहा हूं। जो हेर फेर हुई, नीचे ऊपर हुई है, वो तो अनिवार्य है, बाध्यता है, समसापेक्ष है, तो कैसे मूल्यांकन होगा। और हर व्यक्ति स्वयं गलत काम करते हुए भी उद्घोष नहीं कर सकता, सार्वजनिक नहीं कर सकता, घोषणा नहीं कर सकता कि मैं गलत काम करने वाला व्यक्ति हूं। कर सकता है? ऐसा मिला है आपको समाज में आज तक कोई जो गलत काम करने के बाद स्वयं उसने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की हो, ये समाज के लोगों सुन लो, देख लो, मैंने ये अपराध की है, ऐसा कहने वाला कहीं मिला है आपको? कलंकिता। इसलिए कहते हैं कि करना पड़ता है। हमें जवाब देते हैं, महाराज गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में थोड़ी बहुत तो नीचे ऊपर होती है, यानी गृहस्थ आश्रम में गलत काम चल जाता है, नहीं? क्योंकि हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थ में ये सब चल जाता है। अब आश्चर्य की बात यह है, हम गिरस्त होकर ये सब गलत काम कर लें तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप साधु होकर गलत काम करो, ये अपराध है। ये कहते हैं कि नहीं बोलो, यही कहते हैं कि नहीं? पब्लिक होकर गलत काम करे ये तो ठीक है, ये हजम हो जाता है समाज को, लेकिन पुलिस होकर गलत काम करे समाज को हजम होता है? अब जबकि साधु ये कहे तुम गिरस्त हो, तुम गलत काम करो तो तुम्हारे समाज में चलता है, तो तुम्हारी रोटी खाकर हम भी गलत काम करें तो वो क्यों नहीं चलता है? है? चलना चाहिए ना, उसको भी चला लो भाई, दाल रोटी तो तुम ही खिला रहे हो। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं ईमानदारी से, मैं ये नहीं कह सकता गारंटी के साथ कि मुझ में कोई कलंक नहीं, कोई गलती नहीं है। जहां तक ख्याल है मैं अपनी मूल्यांकन में खुद करूं तो मैं तो यही कहूंगा कि मैंने जीवन में कोई गलती नहीं की। आप भी ये कहोगे कि नहीं बोलो? अभी यही कहोगे कि नहीं? लेकिन जब गलती की है कि नहीं अनुसंधान करने लगेंगे तो एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, गलती के बाद गलती सामने जब आता रहेगा तो कहोगे ये तुमने गलती की है, यहां तुमने गलती की है, तो तुम जवाब क्या दोगे? महाराज ये संसार में तो ऐसा होता ही रहता है, तो अपने बचाव में तुम ये बात कहोगे कि नहीं बोलो? हम कहते हैं कि नहीं, अपने बचाव में ये शब्द प्रयोग करते हैं कि नहीं? महाराज ये तो होता ही रहता है, जमाना ऐसा है, समाज ऐसा है, थोड़ी बहुत नीचे ऊपर न करो, हेर फेर न करो तो ये समाज में जीना मुश्किल हो जाएगा। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिल चरत्वं च नास्ति मई देव। दो संबोधन है शिव जी के लिए, शंकराचार्य जी दो संबोधन कर रहे हैं, एक देवा ये संबोधन कर रहे हैं, हे देवा मई मुझ में जड़ता नास्ति, पशुता नास्ति, कलंकिता नास्ति, कुटिलचारत्वं च नास्ति। तब मेरा तिरस्कार क्यों कर रहे हो? और यदि अस्ति, हे राजमौले, ये संबोधन है राजमौले, हे राजमौले यदि अस्ति आपके दृष्टि से मुझ में ये दोष यदि हैं, हालांकि मेरे दृष्टि से मुझ में ये दोष नहीं है, मैंने भूमिका में कह दिया ना, हर व्यक्ति अपने गलती को नहीं देखता है, दूसरे को गलती को जल्दी देखता है, अपने गलती को नहीं देखता है, ये जीव का स्वभाव है। आपके दृष्टि से यदि मुझ में ये दोष हैं भी तो ध्यान देना, क्योंकि जड़ पदार्थों के सेवन करते करते और जड़ वस्तुओं के साथ आत्म तादात्म्य करने के कारण आध्यात्मिक जड़ पदार्थों के साथ संबंध से मुझ में जड़ता आपके दृष्टि से हो सकती है। आप नहीं मानोगे कि मैं जड़ हूं, आप लोग यहां बैठे हो, आप अपने को जड़ मानते हो कुर्सी की तरह, बोलो हैं? सही रूप में विचार करें, आपका शरीर और कुर्सी में अंतर नहीं है, सही रूप में विचार करें तो आपका ये जो कुर्सी यदि 100% जड़ है तो आपका शरीर भी 100% क्या है? जड़ है। लेकिन कुर्सी को 100% जड़ आप मानने को तैयार हैं, लेकिन अपने शरीर को 100% जड़ मानने को तैयार हैं? बोलो, आप तैयार हो अपने शरीर को 100% कुर्सी की तरह जड़ है मानने को तैयार है, जबकि आपका शरीर 100% कुर्सी की तरह ही जड़ है। चैतन्य के साथ तादात्म्य होने के कारण आप अपने आप को अपने शरीर को जड़ नहीं मान सकते, लेकिन कोई विचार करने वाला व्यक्ति, तत्व विचार करने वाला व्यक्ति, विवेक करने वाला व्यक्ति जड़ और चैतन्य क्या है, क्या जड़ है क्या चैतन्य है, ये विचार करने वाला व्यक्ति शरीर को कुर्सी की तरह 100% जड़ स्वीकार करेगा कि नहीं, बोलो? अब भी करते हो विचार करने के समय में, तो अब भी यही कहोगे चैतन्य मैं हूं और शरीर मेरा, तो शरीर तो जड़ है। ऐसे भ्रांति क्यों हुई भाई? तादात्म्य के चलते। कुर्सी के साथ आपका तादात्म्यता नहीं है, चैतन्य के तादात्म्यता नहीं है, इसीलिए कुर्सी को तो तुम 100% जड़ मानने को तैयार हो, लेकिन शरीर के साथ चैतन्य का ऐसा तादात्म्य बन गया है, अन्यस्मि अन्य धर्मा धर्मी तादात्म्य हो गया है। चैतन्य का धर्म शरीर में और शरीर का धर्म चैतन्य में अन्योन्य आश्रय होने के कारण इस तरह भ्रांति हो सकती है। तो ये तो कोई समझदार व्यक्ति विचार करेगा तभी उसको दिखेगा कि जड़ता कितनी है और चेतनता कितनी है। पशुता भी है, हालांकि आप अपने आप को पशु मानने को तैयार नहीं हो। बोलो, आप लोग अपने आप को पशु मानने को तैयार हो? पशु मानने को तैयार हो? बोलो, पशु मानते हो कि इंसान मानते हो? लेकिन जब विचार करते हैं तुम अपने को भले इंसान मान लो, लेकिन जब तत्व विचार करते हैं तो तुम्हारे में इंसानियता कितनी है और पशुता कितनी है स्पष्ट दिखेगा। अब शैव दर्शन में तो कहा गया है, पाशवद्दो ही पशव, पाश से बधे हुए होने के कारण जीव मात्र पशु है। पाश पंचविधः, आप पांच प्रकार के पाशों से बधे हैं। और गीता में तो कह दिया है कर्मानुबंधी में मनुष्य लोग, इस संसार में हर मनुष्य उसके द्वारा किए गए कर्म से बांधा हुआ है। तो जो बांधा हुआ हो वो इंसान कैसे हो सकता है? बोलो, इंसान बांधा हुआ होता है? स्वतंत्र को इंसान कहेंगे, बंधे हुए को इंसान कहेंगे? बंधे हुए को तो पशु कहेंगे। इसलिए तुमने भगवान को पशुपति माना कि नहीं? भगवान को पशुपति माना कि नहीं? वह पशुपति है तो पशु कौन है? बोलो, तुम खुद पशु हो कि नहीं? उसको तुमने पशुपति माना है तो तुम खुद पशु हो। तो विचार करने पर सिद्ध होता है कि मुझ में पशुता है, लेकिन विचार नहीं करें तो फिर हम पशु सिद्ध नहीं होते, हम तो अपने आप को इंसान बंधे हुए हैं फिर भी इंसान कहते जा रहे हैं। बंधे हुए हैं फिर भी क्या कह रहे हैं? कहने के लिए अपने आप को इंसान कह रहे हैं और बंधे हुए हैं, इसलिए विचार करने पर अपने आप में पशुता सिद्ध हुआ कि नहीं? बोलो, जड़ता पशुता कलंकिता, कलंकी माने जो शास्त्र ने करने से निषेध किया हुआ काम है वह तुम यदि करते हो तो निषिद्ध कर्म करने वालों को कलंकी बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि चोरी न करो, तुमने चोरी किया तो वो तुम्हारे मथे में कलंक लग गया कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि तुम अभक्षण भक्षण न करो और तुमने कर ली तो कलंक लगा कि नहीं? शास्त्र ने कहा कि ये कर्म ना करो फिर भी तुमने कर ली तो यही तो तुम्हारी कलंकता है। और वास्तव में विचार करें तो तुमने इतनी गलत काम कर रखी है, तुम निर्दोष कैसे सिद्ध होगे? इतनी गलत काम कर रखी है कि तुम निर्दोष तो सिद्ध नहीं हो सकते हो, इसलिए कलंकिता कुटिलचरत्वम, करते कुछ हो, कहते कुछ हो, मन में कुछ और है, यही कुटिलता है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मन्यन्यत, इसी का नाम है कुटिलता। मन में कुछ और है, वाणी से कुछ और बोल रहे हो और कर्म कुछ और कर रहे हो, इसी को कुटिलता बोलते हैं। यही दुरात्मा का लक्षण है। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मन में जो है वही वाणी में है और मन और वाणी में जो है वही व्यवहार में है, तो उसी को सरल व्यक्ति कहेंगे, उसी को सीधा व्यक्ति कहेंगे। और मन में कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ है, तो उसको क्या कहेंगे? टेढ़ा व्यक्ति कहेंगे कि नहीं? वो व्यक्ति बड़ा टेढ़ा है, करता कुछ है, बोलता कुछ और है। व्यवहार में भी तो ये कहते हैं ना, उस टेढ़ेपने को ही कुटिलचारत्वम। जड़ता पशुता कलंकिता कुटिलचारत्वम च नास्ति मयि देव, यदि अस्ति राजमौले। राजमौले संबोधन है, राजाओं का भी महाराज सिरमौर राजमौले, राजमुकुट। अस्ति यदि राजमौले, हे राजमौले, ये संबोधन हो। यदि कदाचित मुझ में जड़ता भी उद हो, पशुता भी हो, कलंकिता भी हो, कुटिल चरता भी हो, तो भी आपके द्वारा तिरस्कार करने योग्य तो नहीं।
1: ओम नमः शिवाय। यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org। ओम नमः शिवाय।

पार्वती जी ने उत्तर दिया, गोकुलश्च अस्ति, गोकुल में चली जा, वहाँ गाय चराते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ तुझे नजर आ जाएगा, चली जा वहाँ। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये मेरे कोई भी तर्क यहाँ काम नहीं किए, व्यंग काम नहीं किए, इनका बराबर मुझे उत्तर मिलता रहा, समानता होती रही। तो फिर लक्ष्मी जी बोली, अच्छा तो बहन देख, तूने जो निर्णय लिया अपने पति के वरण में, मुझे लगता है कि वो तेरा वरण कुछ अच्छा नहीं था। अभी भी मैं तुम्हें समझाती हूँ कि तुम अपने निर्णय को बदल लो। तुमने जिस पति का वरण किया है वो तो अवधूत है, दिगंबर है और अमंगलिक रूप को धारण करने वाला है, चिता के भस्म आदि को, इसलिए तुम अपने निर्णय को मैं समझती हूँ कि अभी भी तुम्हें बदल देना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, बहन सुन, तुम कौन हो? बोले, सिंधु सुता, समुद्र की कन्या, सिंधु पुत्री। और मैं कौन हूँ? गिरिराज हिमालय पुत्री। और अब जब हम जिसकी पुत्री, मैं हिमालय की पुत्री हूँ और तुम सिंधु पुत्री हो, तो तुम्हारा स्वभाव ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि तुम्हारे पिता का स्वभाव ही ऐसा है, कभी वो घटता है और कभी वो बढ़ता है, कभी चढ़ता है कभी उतरता है, उसमें हलचल है, एकता नहीं है, वो एक नहीं है। इसलिए उनकी पुत्री होने के कारण तुम अपनी बुद्धि के निर्णयों को बदलती रहो। इसीलिए लक्ष्मी चंचला है, निर्णय बदलती रहती है, घर बदलती रहती है, अभी ये घर बाद में दूसरा घर, इस तरह से घर बदलती रहता, ये तुम्हारा पिता का गुण तुम्हारे अंदर आ गया। परंतु बहन, मैं तो हिमालय सुता हूँ ना, हिमालय कन्या हूँ ना, मेरे पिता का स्वभाव स्थिर है, गिरिराज हिमालय अडिग हैं, अस्थिर हैं, और उनकी स्थिरता तो मुझे पिता से प्राप्त है, इसलिए मेरी मति स्थिर है, मैं अपनी स्थिर मति को बदल नहीं सकती हूँ। जो निर्णय मेरा हो गया सो निर्णय मेरा हो गया, मेरे शिव के प्रति जो मैंने निर्णय कर लिया है वो अब बदला नहीं जाएगा। तो कहने का इसका अर्थ, बहुत बहुत सारे व्यंग हैं, उनमें से कुछ मैंने आपको सुनाए। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि कहीं यहाँ शिव तत्व की व्याख्या हो रही है, तो आप ये भेद नहीं कर लेना कि भगवान श्री हरि हर अलग है और हरि अलग है। ये तो केवल एक लीला मात्र का पक्ष है, जो हरि है वही हर है, जो हर है वही हरि है, भगवान हरि हर में अभेदता है, यहाँ कोई भेद नहीं है। तो भगवान शिव स्वयं सृष्टि के कार्य के लिए स्वयमेव ही अपनी माया को जब स्वीकार कर लेते हैं, तो माया के वशवर्ती अर्थात जो शुद्ध सात्विक शक्ति है उसके वशवर्ती ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चिदाभस्मा लेपो गरल वसनम दिपटरो, हे प्रभु, आपने अपना वेश ऐसा बनाया हुआ है, चिदा की भस्मी को धारण करते हैं, दिशाओं को पट बनाकर पहनते हैं, चिदाभस्मा लेपो गरल वसनम दिपटरो, और सर्पों को गले में धारण करते हैं, देखने में आपका रूप बड़ा ही अमांगलिक दिखाई पड़ता है, अशुभ रूप, परंतु आपको एक भिखारी अशुभता कैसी दिखाई पड़ती है? बोले, जैसे कोई भिक्षुक बना ले। परंतु आपको पदवी क्या मिली है? आपको पदवी ये मिली है कि आपको जगदीश्वर की उपाधि से आपको सुशोभित है, आपके पास जगदीश्वर की पदवी प्राप्त है, आपको जगदीश्वर की उपाधि जो मिली है
भगवान शिव को जगदीश्वर कहते, जगत के ईषण करने वाले, जगत का शासन करने वाले, जगत पर जिनका शासन चले उनका नाम है जगदीश्वर। बोले प्रभु आपको जगत शासन करने की जो उपाधि मिली हुई है जगदीश्वर की, आपको पदवी जो प्राप्त हुई है वो किसके कारण हुई है? भवानी त्वत्पाणी ग्रहण परिपाटी फल इदम। हे भवानी, आपने जो भगवती महाशक्ति का पाणी ग्रहण जो स्वीकार कर लिया, माँ ने आपका हाथ जो पकड़ लिया, जिसके कारण आपको ये पदवी प्राप्त हो गई। तो कहने का भाव ये था कि भगवान शिव स्वयमेव ही अपनी शक्ति को अपने से अलग करते हुए, स्वयं अपनी शक्ति की सत्ता को जब स्वीकार कर लेते हैं, तो वो शिव शंकर के रूप में प्रकट होकर, उजागर होकर के इस सृष्टि के जगदीश्वर कहलाते हैं। और शक्ति सहित जो शिव है वो जगदीश्वर है, जगत का शासन करने वाले। तो जगत शासन को चलाते हुए भगवान शिव को ये प्रलय की लीला करनी होती है, और जिसके कारण वो इस तमोगुणी लीला के कारण भगवान शिव को तमोगुणी देव कहा गया है। और शिव अत्यंत जो शुद्ध है, नित्य है, शुद्ध है, अर्थात जिनमें कोई गुणों का विकार नहीं है, वो शिव है। निर्विकार, विकार से रहित वो शिव है। और जो अत्यंत सात्विक, परम सात्विक, जिसके अंदर कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है, ऐसा निर्विकार स्वरूप शिव कहलाता है। और शिव का अभिप्राय आत्मा है, और आत्मा ही शिव है। और उस आत्मा के संग जो वृत्ति है उसी का नाम गिरिजा है, इसीलिए तो आप कहते

यद्यत् कर्म करोमि तदखिलं संभो तव आराधनम्। भगवान शिव आत्मा तौ गिरिजामति, ये जो शरीर में आत्मा है यही तो गिरिजापति शिव है। आत्मा तौ गिरिजामति सहचरा, ये मति जो बुद्धि है ये भगवान शिव की आत्मा की सहचरी बनकर उनके संग नित्य रहकर बुद्धि गिरिजा है और आत्मा शिव है। बुद्धि गिरिजा है यही पार्वती है और भगवान शिव आत्मा है, भगवान शंकर विश्वास है, याद रखना। भगवान शिव का नाम विश्वास है, विश्वास के रूप में जब शिव रहते हैं तब बुद्धि श्रद्धा बन जाती है, याद रखो। और जब वही शिव शिव के रूप में रहते हैं, निर्विकार रूप में रहते हैं, तब वो आत्मा है और उस आत्मा में स्थिर होने वाली जो मति है उसी का नाम है गिरिजा। गिरिजा वो है जो कभी शिव से कभी अलग नहीं होती है, शिव के संग रहकर शिव के साथ चलने वाली जो अत्यंत शुद्ध सात्विक मति है, उसी बुद्धि है, उसी का नाम गिरिजा है। और शंकर के संग जो निवास करे, भगवान शिव के संग रहने वाली भगवती पार्वती उमा जिनके नाम है, और उमा के रूप में जब भगवान शिव के संग में रहती हैं तो वही श्रद्धा और विश्वास के रूप में प्रणित हो जाती हैं। इसीलिए कहा वंदे भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। वो श्रद्धा के रूप में भी है, विश्वास के रूप में। कौन है? बोले शंकर और पार्वती गौरी। वंदे भवानी शंकरो, भवानी जो के संग में अर्थात गिरिजा के संग में रहने, और इधर आत्मस्वरूप में ये मति जो निरंतर रहती है। दोनों में, शिव में और इस मति में अंतर क्या है, इन दोनों में वेद क्या है, एक छोटे से उदाहरण से समझिए। एक बार भगवान शिव कैलाश पर बैठे हैं और ये उपदेश की जो परंपरा है ना, प्रवचन की परंपरा, ये परंपरा कहाँ से आई, ये प्रवचन करने की परंपरा कहाँ से आई? बोली ये प्रवचन करने की परंपरा निकली है भगवान शिव से। सदा शिव समारंभम, शिव से ये आरंभ हुई है प्रवचन देने वाली बात, और तब से ये सनकादृशियों से आगे आगे ये क्रम बढ़ता रहा, ये धारा बढ़ती रही। और प्रवचन भगवान शिव का निरंतर किसके संग होता है? बोले माँ पार्वती के संग। शंकर उपदेश देते हैं और माँ उमा इस उपदेश को ग्रहण करती है, ये सुनती है, भगवान शिव सुनाते हैं। इनका ये सत्संग नित्य निरंतर अखंड रूप से चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एक दिन भगवान शिव माँ उमा को उपदेश सुना रहे थे। उपदेश सुनाते सुनाते यकायक माँ ने देखा, उपदेश सुन रही थी तो कभी कभी सुनने वाले का ध्यान इधर उधर भी हो जाता। उपदेश जब सुना रहे थे भगवान शिव तो अचानक देखा कि माँ पार्वती ने उनके शरीर में जल की एक बूंद आई, छींट पड़ी। जल की इस बूंद को देखकर माँ को आश्चर्य हुआ, आसमान की तरफ देखा, दृष्टि दौड़ाई, कहीं दूर दूर तक कोई बादल नजर नहीं आया। बिना बादल की बरखा की बूंद देखकर माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़े आश्चर्य के साथ माँ ने भगवान शिव से पूछा, महाराज ये बिना बादल की बरखा कैसी, ये जल कैसा? भगवान शिव ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हाँ पार्वती, समुद्र में मछली ने करवट बदला और उसके जल की बूंद, उसके करवट बदलने से समुद्र का पानी उछला और उसकी बूंद तुम्हारे पर गिर गई।
माँ को लगा कि इतनी कितनी बड़ी मछली जो समुद्र में करवट बदले और उसकी बूंद मेरे शरीर में आकर यहाँ पहुंचे, इतनी बड़ी मछली। भगवान शिव से सुनकर उन्हें उस मछली को देखने की जिज्ञासा हो गई, उसे देखना चाहिए, वो कितनी बड़ी मछली है उसे देखें तो सही। और उस मछली को देखने के लिए भगवती हिमालय से चली, सागर के तट पर आ गई। जब सागर के तट पर खड़ी हुई देखा तो सागर के किनारे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बड़ी सी मछली उन्हें दिखाई पड़ी। और उन्होंने इतनी बड़ी मछली देख करके माँ ने मछली को हाथ जोड़ा कि हे मत्स्य भगवान, आप बहुत महान हैं। जैसे माँ ने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर मछली को प्रणाम करना चाह, भगवान शिव की माया थी, माँ ने हाथ जोड़ करके सिर झुकाकर प्रणाम करना चाह तो मछली ने रोक दिया, कहा माँ नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, अन्याय नहीं करो, मेरे को प्रणाम मत करो और मेरी प्रशंसा भी मत करो कि तुम बहुत महान हो, इतनी बड़ी हो, मेरी क्या महानता है, मैं तो एक तुच्छ जीव हूँ। महानता तो सागर की है कि मेरे जैसे इसमें अनेकों मछलियां पड़ी हैं, जो अनेकों मछलियों को, मेरी जैसी मछलियों को रहने के लिए स्थान दे, ये सागर महान। तो माँ ने सागर को नमन किया। सागर को जब नमन करने लगे, प्रणाम करने लगे, तो सागर ने कहा माँ मुझे नहीं प्रणाम करो, इसमें मेरी क्या मानता है, इसमें मेरी कोई मानता नहीं, मैं तो एक सामान्य हूँ, महानता तो इस पृथ्वी की है जिसने मेरे जैसे एक नहीं सात सात समुद्र को स्थान दिया है, ये पृथ्वी कितनी महान है। तो माँ पृथ्वी को नमन करने लगी कि ये बड़ी है। जब पृथ्वी के पास पहुंची, पृथ्वी को नमन करने लगी तो पृथ्वी ने कहा माँ आप मेरे को नमन मत करो, इसमें मेरी कोई प्रशंसा नहीं, मैं बड़ी नहीं, मैं महान नहीं, महानता तो उस शेष की है जिसने संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने सिर के ऊपर ऐसे उठाया है जैसे कोई सरसों का दाना किसी की हथेली में रख दे। सरसों के दाने को हथेली में उठाने के समान जिसने इस संपूर्ण पृथ्वी के भार को अपने मस्तक पर लिया हुआ हो, वो शेष महान है। अब तो शेष जी के पास पहुंचकर प्रथम माँ पार्वती उन्हें प्रणाम करने लगी कि हे शेष भगवान, आप बहुत महान हैं। शेष जी ने कहा माँ आप मुझे प्रणाम मत कीजिए, मेरी इसमें क्या महानता है, इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। तो पार्वती जी अवाक होकर सोचने लगे कि ये भी कहता मैं महान नहीं, ये इसने भी बता दिया कि मेरी बड़ाई नहीं, मेरी महानता नहीं, तो आखिर महान है कौन। जब ये मन में सोचने लगी तो शेष भगवान ने कहा माँ मेरी महानता नहीं है, महानता तो इस बात इनकी है जिनके गले में मेरे जैसे अनेकों ही लटके रहते हैं, जिन्होंने मेरे जैसों को अपने गले में लटकाया हुआ है उनकी महानता है, अर्थात जिनके पास से तुम उठ करके यहाँ तक चली आई हो, जिनके पास से तुम उठ करके चली आयो उन्हीं के पास वापस पार्वती जी को भेज दिया कि महान तो वही है, अर्थात जिससे महान कौन, वो शिव महान है जिससे अनंत वृत्तियां उदित होती है और जिसमें जाकर अस्त हो जाती है, जहाँ से इस सृष्टि का सृष्टि उदयमान हुई है और जहाँ से ये प्रकाशित हो रही है जिसमें ये लीन अस्त हो जाती है, जो इस सब का साक्षी है, दृष्टा है, वह परम चेतन, वो परम ज्ञान स्वरूप शिव ही महान है। और वो शिव क्या है, वो स्थिर है, न कहीं जाता है न कहीं आता है, वो अटल है, व्यापक है, ये जाने वाली आने वाली जो वृत्ति है, इस वृत्ति का नाम ही बुद्धि है, याद रखना।
आत्मा न तो कहीं जाता है न कहीं आता है, वह तो अपने आप में स्थिर है। स्थिरता में कहीं जाना आना कुछ नहीं है, परंतु जाने आने वाली एक वृत्ति है, जो वृत्ति का अधिष्ठान केवल वो शिव ही है। और ये वृत्ति एक प्रधान रूप से नित्य शिव के संग रहती है, मिलती है, तो उस वृत्ति का नाम बुद्धि है नारायण। इसीलिए कहा आत्मा तम गिरिजा मति, ये मति ही गिरिजा है। शिव नाम अटल का है। सरल शब्दों में ये कहेंगे, शिव शब्द का अर्थ होता है जो अटल है, अचल है, स्थिर है, नित्य है, शुद्ध है, मुक्त है और परिपूर्ण है। और जो चारों कुठस्थ है, माने जिसके अंदर कुछ समाने की ताकत नहीं। इसीलिए आप लोग बाण देखते हैं ना, शिव बाण, लिंग को बाण कहते हैं। बाण नाम इसलिए पड़ा, ये राजा बलि का पुत्र हुआ जिसका नाम है बाणासुर, बाण। तो बाण ने भगवान शिव के, शिव की इतनी पूजा की, बलिपुत्र ने मन में सोचा कि हम विष्णु भगवान की पूजा नहीं करेंगे, हम भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेंगे। बोले क्यों नहीं करेंगे, ये तो असुरों के साथ, हम लोगों के साथ छल करते। बामन भगवान ने छल करके ही, बलि को छल के ही तो पाताल भेज दिया था। इसलिए कहा कि ये तो छल करने वाले देव हैं। विष्णु का छल हमेशा मोहनी अवतार लेकर के भी छल किया, बामन अवतार लेकर के भी छल किया, ये हमेशा विष्णु असुरों के साथ हमारे साथ अन्याय करते हैं, छल करते हैं, इसलिए हम इनकी उपासना नहीं करेंगे। तब बाण ने, राजा बलि के पुत्र ने मन में निश्चय किया कि मैं शंकर जी की उपासना करूंगा। और शिव उपासना करने के लिए उसने जबलपुर के पास में नर्मदा के जल से, नर्मदा की रेणु को लेकर के, मृतिका को लेकर रोज 1.25 करोड़ वो शिवलिंग बनाता था। और ये लिंग कितना बड़ा होता है, अंगुष्ठाकार, इसको कहते हैं वाण लिंग। प्रमाण है कि अंगूठे के समान, अर्थात शिवलिंग बनाता है और उनकी पूजा प्रतिष्ठा करता है और उसे नर्मदा में विसर्जित करता है। इस प्रकार उसने भगवान शिव के नित्य प्रति 1.25 करोड़ शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करता है और भगवान नर्मदा में विसर्जन करते। इसीलिए नर्मदा से निकलने वाले जो नर्मदेश्वर हैं, उनकी प्रतिष्ठा नहीं की जाती। कहते हैं प्रतिष्ठा करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक। सारे के सारे नर्मदा के शिवलिंग प्रतिष्ठित ही है, वो उसमें कोई अप्रतिष्ठित नहीं है। इसलिए परंपरा है कि नर्मदेश्वर भगवान, भगवान नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा नहीं होती है, उनकी बिना प्रतिष्ठा भी उनकी पूजा होती है। जैसे गंडकी नदी से मिलने वाले भगवान शालिग्राम की प्रतिष्ठा नहीं होती, वो स्वयं सिद्ध हैं। उसी प्रकार नर्मदा से जो निकलने वाले लिंग हैं, वो स्वयं सिद्ध हैं, उनकी प्रतिष्ठा की बात जरूरी नहीं होती। इसीलिए उसको कहते हैं बाण लिंग, उनका नाम पड़ गया बाण, मतलब लिंग का नाम है बाण।

प्रसन्न किया, उनसे वरदान मांग लिया, तो कहा भगवान मुझे आपके लिंग बनाने पड़ते हैं ना, तो दो हाथ से लिंग बनाने पर मुझे बहुत तकलीफ होती है, इसलिए आप मुझे 2000 हाथ दे दो। 2000 हाथ लिए उसने और 2000 हाथों से वो लिंग बनाता है, उनकी प्रतिष्ठा करता है और विसर्जन करता है। इस प्रकार भगवान शिव को प्रसन्न करके बाणासुर ने त्रिलोक की संपत्ति भगवान शिव से प्राप्त कर ली। जब सर्व विजयी हो गया, सब पर अपनी जीत हासिल कर ली, कोई उसके लिए जीतना बाकी नहीं रहा, सब कुछ जीत, सब पर उसने अपना अधिपत्य प्राप्त कर लिया, तो एक दिन बाण कहता है, प्रभु हाथ तो आपकी कृपा से मुझे 2000 मिल गए, पर इन हाथों में खुजली उठ रही है, अर्थात लड़ाई कर, इसलिए मन कर रहा है कि आपके साथ ही आओ दो दो हाथ कर लेते हैं। वो शंकर जी के साथ में ही युद्ध करने के लिए, क्योंकि हाथ की खाज मिटाने के लिए कुछ लड़ना, तो भगवान शंकर से ही कहने लगा, आइए प्रभु मैं आपके साथ ही दो दो हाथ करते हैं। भगवान शिव ने देखा कि ये दुष्ट इस प्रकार की बुद्धि को लिए, भगवान शंकर ने कहा चिंता मत कर, आगे चल करके द्वापर में मैं श्री हरि के रूप में प्रकट होंगे और वो तेरे हाथ की खाद क्या, वो तेरे दो दिन जो ये 2000 हाथ हैं, इन हाथों को काट कर तेरे वास्तविक दो हाथ रह जाएंगे, बाकी जितने हाथ तुझे प्राप्त हैं वो सब तेरे काट कर समाप्त कर देंगे। वही बाणासुर है जिसने उषा अनिरुद्ध का प्रसंग भागवत में आता है, और भगवान श्री हरि कृष्ण के साथ में युद्ध हुआ, भगवान ने बाणासुर के ये अतिरिक्त हाथ जो थे उन सब को काट दिया था। बाणासुर का प्रसंग भागवत में आता है, उसकी कथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो कहने का अर्थ था मेरा, बाण लिंग भगवान का बाण लिंग है, और लिंग का आकार ऐसा है कि बाण लिंग के ऊपर आप दूध चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, जो भी आप चढ़ाते हैं वो सब जैसे चढ़ाते वैसे का वैसे उतर जाता है, कुछ भी अंदर नहीं जाता। कहने का अभिप्राय है शिव वो तत्व है जो चारों ओर से दसों दिशाओं, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे दसों दिशाओं में इतना व्याप्त है कि उसे कहीं से भी उसमें कोई छिद्र नहीं दिखाई देता, पोलापन नहीं देता है दिखाता, अर्थात खोखला नहीं है उस ऐसे ठसा ठस जो घनत्व है, तत्व है, उसी का नाम शिव है, और वो शिव हमारी आत्मा है ना। इसलिए शिव को आत्मा से अतिरिक्त नहीं पहचानो, शिव की पहचान आत्मा के रूप में और आत्मा की पहचान शिव के रूप में प्राप्त करना ही इस प्रवचन का उद्देश्य है नारायण। इसलिए जब, क्योंकि शिव कहने पर कहीं हम बहुत दूर का सोचने लगे, वो दूरस्थ नहीं है, अत्यंत समीपस्थ है, अत्यंत पास है, अत्यंत निकट है, और शंकर कहने पर जो उनका सगुण साकार रूप है, ये शंकर अर्थात जगत के कंकर मानो तो शंकर, जितने भी संसार में जो व्याप्तता शंकर की दिखाई पड़ते सगुण रूप में, भगवान शिव के पांच कार्य, शंकर के पांच कार्य हैं। भगवान उत्पत्ति की लीला करते हैं, क्योंकि ऐसा प्रसंग आता है कि जब हिमालय पुत्री के संग भगवान शिव का विवाह होने जा रहा था, तो उस समय नारद जी उपस्थित थे, भगवान शिव की पार्वती के साथ विवाह हो रहा था, तो कहा महाराज अच्छा विवाह के समय में पिता का दादा का सबका नामोच्चार किया जाता, गोत्रोच्चारण कहते हैं। जब गोत्रोच्चार करने की बात आ रही थी, नारद जी ने कहा प्रभु बोलिए आपके पिता का नाम क्या है, तो शंकर जी सोचने लगे मेरे पिता का

नाम। मैंने सुना है कि मेरे पिता, मैं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से पैदा हुआ तो मेरे पिता ब्रह्मा होंगे। उन्होंने कहा महाराज पिता का नाम बोलिए, तो कदाचित भगवान शिव ने सोचा शायद ब्रह्मा ही होगा, उन्होंने ब्रह्मा जी कह दिया। कहा महाराज इतने से काम नहीं चलेगा, उनके पिता का नाम बताओ। तो उनके पिता का नाम बताने लगे तो शंकर जी ने सोचा कि नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तो इसलिए नारायण होगा। उन्होंने कह दिया नारायण है। कहा महाराज इतने से बात नहीं चलेगी, तीन पीढ़ियां चाहिए, इसलिए आप अपने तीसरी पीढ़ी का नाम बताओ, उसको कौन है। पिता का नाम ब्रह्मा, दादा का नाम विष्णु, तो परदादा का नाम क्या है। तो शंकर जी सोचते लगे कि परदादा का नाम क्या होगा, मन में विचार करने लगे, इससे ऊपर तो वो भी नहीं जानते। तो शंकर जी ने कह दिया परदादा का नाम। पूछने पर उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ। शंकर जी ने उत्तर दिया वो तो मैं ही हूँ। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये था, जिनकी कोई गोत्र नहीं, कोई कुल नहीं, जिसको कहते नकुल, अर्थात जिससे पूर्व कुछ नहीं था, जिससे पूर्व कुछ नहीं था, ऐसे अनादि हैं शिव, जिनसे ये सृष्टि है और जिनसे पहले कुछ नहीं था, जिनके बाद कुछ नहीं है और जिनके में ही ये सब कुछ भाषित है, ऐसे तत्व रूप में भगवान शिव हैं। तो शिव के पांच कार्य हैं सृष्टि करने के लिए। पहला कार्य सृष्टि की रचना करना, उत्पत्ति स्थिति लय और अनुग्रह निग्रह, ये भगवान की पांच लीलाएं हैं। इसीलिए पंचमुखी महादेव होते हैं, शंकर के पांच मुख हैं, इन पांचों मुखों से भगवान की लीला होती है और इसीलिए पांच पंचमुख परमेश्वर भगवान शिव है। यही पार्वती नाते इनके चरणों में आज यही प्रणाम करते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। तवैश्वर्यम, ऐसे शिव का ऐश्वर्य क्या है, इनका ऐश्वर्य भी देखने जैसा है, उनके ऐश्वर्य पर कल विचार करेंगे। बोलो शंकर भगवान की।

मंगलाचरण में पांचवा मंत्र बाकी है, श्लोक वो पूरा करेंगे आज। ओम नमः प्रणवार्थाय सुत ओम

दक्षिणामूर्ति को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनकी चरण में जाते हैं। दक्षिण दिशा की ओर अपना मुख रखकर जो विग्रह विद्यमान है उसी का नाम है दक्षिणामूर्ति। दक्षिण दिशा मृत्यु का सूचक है, उत्तर दिशा मोक्षदायक है। जिज्ञासु उत्तराभिमुख है क्योंकि मुक्ति चाहता है। गुरु दक्षिणाभिमुख है क्योंकि मृत्यु को पार कर गया है, मृत्यु का डर निकल गया है, अमृत की प्राप्ति हो गई है। तो दक्षिणाभिमुखी मूर्ति जो है उन दक्षिणा मूर्ति को यह हमारा प्रणाम है। अभी दक्षिणा मूर्ति का जो स्वरूप है, सच्चा जो अपना आपा है, उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं ओम नमः प्रणवार्थाय। प्रणव शब्द का अर्थ होता है जो रक्षा करे, जो हमारी रक्षा करे उसी का नाम है प्रणव। कौन रक्षा करता है? तो कहते हैं प्रणवार्थ का जिसको ज्ञान है उसकी रक्षा होती है। ओम नमः प्रणवार्थाय। प्रणव अभिदान है, नाम है, और उसका अभिधेय परब्रह्म है। जैसे राम, कृष्ण, भरत, लक्ष्मण, सीता, ये सब नाम है, और नाम का नामी होता है, नाम नामी में संबंध होता है। तो ओम जो है, प्रणव जो है, ओमकार जो है, वो नाम है, इसको संस्कृत में अभिधान कहते हैं। और उस अभिधान का अभिधेय, अभिधेय मानी नामी, उसका अर्थ क्या है? परब्रह्म। नमः प्रणवार्थाय। तो जो परब्रह्म है, जो प्रणव का अर्थ है, उस ब्रह्म स्वरूप दक्षिणामूर्ति को ये प्रणाम है। आजकल लोगों में एक भ्रांति है और सब लोग ये बात मानते, बड़े बड़े लोग मानते हैं और कहते रहेंगे ओम द डिवाइन साउंड, ओम ये दिव्य ध्वनि है और उसमें से समग्र जगत प्रकट हुआ है। शब्द से कुछ नहीं होता है, इतनी बेवकूफी है। वो लोग मानते हैं कि प्रणव से पूरा जगत होता है। प्रणव से जगत नहीं होता है, प्रणव का जो अर्थ है परब्रह्म, उससे जगत प्रकट हुआ है। ये शब्द से नहीं, शब्द का जो अर्थ है उससे जगत प्रकट हुआ है। इतनी बात भी वो लोग समझते नहीं है, ओम द डिवाइन साउंड करके चालू कर देंगे। तो ओम यत् भूतम यच्च भव्यम सर्वम ओम इति, उपनिषद का मंत्र है यत् भूतम यच्च भव्यम, चकारेण वर्तमान अपि, जो भूत में भविष्य, भूतकाल में था, भविष्य में होगा, और जो वर्तमान में प्रतीत हो रहा है, सब कुछ प्रणव ही है, ओंकार है, माने काल प्रणव से ही प्रकट हुआ है। काल और देश की उत्पत्ति युगपत होती है, काल और देश साथ साथ प्रकट होते हैं,
तो देश की उत्पत्ति काल की उत्पत्ति और जन्यानाम जनक काल है। ये दुनिया में जितनी चीज पैदा हुई है काल में प्रकट हुई है, तो वस्तु भी आ गई। ये सब जो है यही ब्रह्म से प्रकट हुई है, वही परब्रह्म दक्षिणामूर्ति का स्वरूप है। ओम नमः प्रणवार्थाय अर्थाय प्रणवस्य अर्थाय इदं नमः। फिर ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये। जो ज्ञान स्वरूप है जिसमें अविद्या माया का लेश मात्र भी नहीं है। शुद्ध ज्ञान का एक अर्थ यह भी होता है कि जिसमें ज्ञाता ज्ञानम ज्ञेय ये त्रिपुटी का प्रकाशक है और त्रिपुटी जिसमें अध्यारोपित है वही है शुद्ध ज्ञान, जिसको संस्कृत में ज्ञप्ति स्वरूप कहते हैं। और पंचदशी में प्रथम अध्याय का अध्ययन करो तो संवित एका, संवित माने चित स्वरूप आत्मा एक है और अद्वितीय है, उसी का निरूपण है, उसी को कहते ज्ञान रूपाय। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये। ये दक्षिणामूर्ति मूर्ति दिखती है पर अमूर्ति है, ज्ञान स्वरूप है। दक्षिणामूर्ते अमूर्ते सनकादि मुनिगण। ये सनकादि मुनिजन जिसकी प्रार्थना करते ऐसे ये दक्षिणामूर्ति अमूर्ति भी है और अमूर्त होने पर भी मूर्त दिखते हैं। दक्षिणा मूर्ते अमूर्ते सनकादि मुनि जन हृत्पूर्ते। उनके हृदय में स्फुरित होते हैं, सनकादि के हृदय में गुरु मूर्ति स्फुरित होती है, तो ऐसे दक्षिणा मूर्ति है। शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय। देखो भाई ये शब्द समझने लायक है। शांति ही यहां सब लोगों को मैं इतनी प्रार्थना करूंगा कि जब आप लोग शांति बोलते हैं तो मुझे अशांति होती है, क्योंकि संस्कृत थोड़ा भी जानना चाहिए। ओम शांति शांति ऐसा नहीं, ओम शांति शांति शांति ही, उसमें विसर्ग के बाद अगर शकार आता है तो विसर्ग कैसे उच्चारण होता है, श खोड़ो श। ओम जैसे ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः, तो ऐसे ओम शांति शांति और अंत में ही है शांति।

0: देहे, ठीक है। और हरि ओम भी जब भी बोलना है तो विसर्ग है उसके पीछे, हरि ही ओम ऐसे बोलना चाहिए, हरि ओम नहीं बोलना है, हरि ओम गलत है। हरि ही ओम श्री गुरुभ्यो नमः, हरि ही ओम। हाँ सब अच्छा लगेगा, विसर्ग है ना वहां, उसको हम लोग खा जाते हैं, भूख लगी है सुबह। हरि ही ओम। ओम शांति शांति शांति। और कुछ न करो, इतना ही बोलते रहो, दोनों शांति हो जाएगी, वर्षा ठीक हो जाएगी। अब आप देखिए, शांति शब्द का लोग इंग्लिश में अनुवाद भी करते हैं, ओम पीस पीस पीस। इसका मतलब है न संस्कृत जानते हैं न शास्त्र जानते हैं, ओम पीस पीस पीस ऐसा नहीं है। सर्व उपद्रव का अभाव का नाम शांति है, अशांति की निवृत्ति ही शांति है। शुद्ध जल माने जिसमें से मल दूर हो गया है वह जल शुद्ध है, निर्मल। इसी प्रकार से अधिदैविक अधिभौतिक आध्यात्मिक उपद्रव तीनों शांत हो गए हैं, दूर हो गए, उसी को नाम है शांति। मानी अशांति का अभाव का नाम क्या है, शांति। समझ में आया, नॉट पीस पीस पीस। दूसरी बात, ओम क्या है, वहां भगवान का नाम है, वही उपद्रव को शांत कर सकता है, हम नहीं। अब समझिए दूसरा अर्थ, यहां है दूसरा अर्थ है, चित्त में शांति आती है, फिर अशांति आने पर वो दूर हो जाती है। वृत्ति स्वरूप होने के कारण अशांति शांति को दूर करती है और शांति अशांति को दूर करते है, म्यूचुअली रिप्लेसिंग ईच अदर। शांत वृत्ति ही घोर वृत्ति ही, घोर वृत्ति में रज आ गया। कभी हम शांत रहते हैं, कभी विक्षिप्त हो जाते हैं, कभी मूड हो जाते हैं, कभी एकाग्र हो जाते हैं, ये चित्त की सब अवस्था है। तो शांति वो है जो चित्त में नित्य नहीं रह सकती है, दूसरा विचार उसको दूर कर सकता है। पर जब प्रकर्षेण शांत, ये जो प्रशांत है, ओम नमः प्रणवार्ताय शुद्ध ज्ञानेक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय, प्रशांत का अर्थ क्या है, प्रकर्षेण शांत है, प्रकृष्ट शांति जिसमें है वो। इसका अर्थ है कि शांति और अशांति ये तो वृत्ति के धर्म है, और आत्मा जो है ये दोनों में न अशांत होता है न शांत होता है, वो तो परम शांत है। उसका जो स्वरूप है उसको कोई विक्षिप्त भी नहीं कर सकता है न शांत कर सकता है, वो तो परम शांत है। तो अपने आत्मा को परम शांति के रूप में जानना, प्रशांत आत्मा होना, और शंकर और दक्षिणामूर्ति का स्वरूप क्या है, प्रशांत है। एक बार हमें स्वामी चिन्मय जी को पूछा, स्वामी जी मे आई डिस्टर्ब यू, ही सेड नोबडी कैन डिस्टर्ब मी। मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब करूं, बोलते हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, वह आत्मा में हूं। तो दिस इज टू बी डिस्कवर्ड। आत्मा प्रशांत है, ये आत्मा की शांति को पहचानना है, बनाना नहीं है। तो नम प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञान ही का मूर्ति है, शुद्ध ज्ञान ही जिसकी मूर्ति है, ज्ञप्ति स्वरूप जो है जिसमें अविद्या बिल्कुल नहीं है, अविद्या का अभाव है जिसमें, निर्मलाय जिसमें राग द्वेष भय इत्यादि मल मल माने अशुद्धियां कोई नहीं है, ऐसे जो परमेश्वर स्वरूप दक्षिणामूर्ति है, निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओके, अब यहां तक हमने मंगलाचरण किया। मौन व्याख्या प्रगटिति पर ब्रह्म तत्व युवानम वशिष्ठान्ते वसदृशिगणै आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम स्वात्मा रामम मुदित वदनम दक्षिणामूर्तिमीरे वटविटपि समीपे भूमि बागे निषन्नम सकल मुनि जनानाम ज्ञानदातारमारात त्रिभुवन गुरुमीशम दक्षिणामूर्ति देवम जनन मरण दुख छेद दक्षम नमामि। हो गया, इतना तक हो गया। अभी आज से हम लोग प्रथम श्लोक की व्याख्या आरंभ करेंगे। आज हो गई 21 तारीख है ना, और 30 तारीख को यहां पूरा हो जाएगा ना, 31st हो या 31st, तो ठीक है 10 दिन है, अभी आराम से हो जाएगा। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का इतना आदर है अपनी परंपरा में, आप अभी भी जाइए कैलास आश्रम में या शंकराचार्य के मठ में, तो प्रवचन शुरू होने के पहले 5 श्लोक पढ़े जाते हैं, बोलते खड़े होके विद्यार्थी बोलते हैं, और 5 एक एक श्लोक पूरा करने पे वहां अपनी जगह से नमस्कार करते हैं, नीचे जमीन पे नमस्कार करते हैं गुरु को। प्रवचन पूरा होने पर अंतिम जो 5 श्लोक है उसका एक एक का पाठ करके खड़े खड़े नीचे झुककर जमीन पर नमस्कार करते हैं। 5 और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 नमस्कार गुरु को रोज ये श्लोक बोल के करते हैं। और प्रातः स्मरणीय महाराज श्री ने जीवन भर जैसे एक नियम बना लिया कि विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी, इस श्लोक का रोज पाठ वे करते थे, हम लोग करते थे, वे समझ के करते थे, हम मैं क्या कहूं हम इतना ही समझ देते हैं कि महाराज जी समझ कर रहे हैं, बस इतना ही करके करते थे। बहुत बढ़िया श्लोक है। अगर समग्र वेदांत का सार सर्वस्व कोई एक स्तोत्र में रखना है, ये कौन सा है, हाँ दक्षिणामूर्ति, और ये मंगल मूर्ति है। अब थोड़ी बात आपको दक्षिणामूर्ति के विषय में भी बताएं। दक्षिण भारत में जहां भारत की परंपरा और संप्रदाय अटूट बना रहा है, हमारे उत्तर भारतीय माने गुजरात और उसके ऊपर वाले सब, महाराष्ट्र के ऊपर वाले, हम लोग इतने सद्भाग्य वाले नहीं है। मुसलमानों ने आकर मंदिर तोड़ दिए, ऐसा दिल्ली में मेरे ख्याल से ये कौन था वो राजा, मुसलमान राजा कौन था जिसने, औरंगजेब ने ऐसा नियम बनाया मुसलमान को टैक्स नहीं देने का, जो हिंदू है उसको टैक्स देने का, कई प्रकार का ये था। वहां उस समय हिंदू बने रहना भी बहुत बड़ी बात थी, छुप छुप के अपने धर्म का पालन करते थे, मंदिर तोड़ दिए गए, सब कुछ नुकसान कर दिया गया और हमेशा अत्याचार होता था धर्मांतर के लिए। तो वी आर सर्वाइवल्स, बच्चे जैसे तैसे। पर दक्षिण भारत में इससे बच गए भगवान की कृपा से, तो हमारी परंपरागत मंदिर भी आज ऐसे ही है। आप रामेश्वर में जाइए कि फिर मदुराई मीनाक्षी सुंदरेश्वर और मीनाक्षी का दर्शन करिए। उस जमाने में इतने भारी स्तंभ कैसे उन्होंने बनाए पत्थर के, वो समझ में आता नहीं है। और मैं यहां से प्रार्थना करूंगा और गिरीश भाई को कि सबको एक बार कम से कम बृहदेश्वर का दर्शन कराना। वो है तंजौर में है, ऐसा मंदिर दुनिया में कहीं नहीं है। उसका पूरा गुंबज इतना बड़ा है, एक पत्थर का बना हुआ है। उस जमाने में कैसे एक पत्थर ऊपर पहुंचा है इतना ऊंचे मंदिर पर, और 13 फुट का तो शंकर भगवान का लिंग है, 13 फुट का, और उससे बड़ी नंदी है बाहर, आह देखने का होता है। इतना सुंदर मंदिर, वहां बृहदेश्वर शंकर भगवान का मंदिर है, और एक थैला माने पूरा बैग भर के राइस का हर रोज उनको चावल का भोग लगता है। हमारे स्वामी दयानंद जी ने फिर से शुरू करवाया सब। बहुत सुंदर मंदिर है बृहदेश्वर, बृहदीश्वर बिग टेम्पल, आप वेबसाइट पे भी देख लेना, उसका बहुत जानकार है। मैं सब मंदिरों में गया हूं। एक बात तंजौर की आपको बता दें, कुंभकोणम की, भारत में सिर्फ यही जगह है जहां एक एक ग्रह का अलग अलग मंदिर बना है। सिर्फ नवग्रह का साथ में मिलेगा आपको, पर शनि का अलग, बुध का अलग, गुरु का अलग, शुक्र का अलग, ऐसा मंदिर कहीं नहीं है दुनिया में। और 2 दिन में नवग्रह की यात्रा कराते वो लोग सब मंदिर का दर्शन करते हैं, मैंने कई 2-3 बार किया, बहुत सुंदर है। सो जितने शंकर भगवान के मंदिर हमने देखे, उसमें पूर्व दिशा में वहां लिंगोद्भव मूर्ति होती है, शंकर भगवान लिंग से प्रकट होते हैं, ये मूर्ति है ज्योतिर्लिंग। हर एक मंदिर में दक्षिण दिशा के द्वार पर एक मंदिर बना रहता है, वहां दक्षिणा मूर्ति, मेधा दक्षिणा मूर्ति की अवश्य विग्रह होता है और लोग बड़े भाव से चाव से उनकी पूजा करते हैं। थोड़ा भी ज्योतिष का ज्ञान हो तो एक बात है कि सब ग्रहों में सबसे प्रबल ग्रह कौन है, जमाई बोलता है कोई जामात्र दशमो ग्रह, वो तो नीचे का है, ऊपर का बोलते हैं, गुरु है। ऐसा लिखा है यस्य केंद्रे गुरु किम कुर्वन्ती सर्वे ग्रहा, अगर किसी के केंद्र में गुरु हो तो दूसरे ग्रह उसको कुछ नहीं कर सकता है। हमारे महाराज श्री की भाषा में गुरु मानी बुद्धि, जो बुद्धिमान है वो सब समस्या को हल कर सकता है, और जो बेवकूफ है क्या, समस्या नहीं होगी वहां वो पैदा करेगा, गड़बड़ ये है। महाराज श्री का कहना था गुरु, तो दक्षिण भारत में यही देखा जाता है कि अगर गुरु किसी का दुर्बल हो, नहीं तो ऐसे भी ग्रहों की दशा से बचने के लिए बोलते हैं दक्षिणा मूर्ति की पूजा करो। और गुरुवार की बहुत बड़ी भीड़ आती है, और हमारे स्वामी दयानंद जी गुरु जी जो हमारे हैं, उन्होंने सभी आश्रमों में दक्षिणा मूर्ति की स्थापना की। इतनी सुंदर मूर्ति है, मैं आपको धीरे धीरे वर्णन करूंगा किस प्रकार का उनका चित्र मूर्ति बनी हुई है। आगम शास्त्र में कोई विग्रह इतना सुंदर और इतना समझदारी पूर्वक बनाया हुआ कोई नहीं मिलेगा आपको, कंप्लीट। शंकर भगवान का ये उपदेश कर्ता गुरु मूर्ति है। शंकर भगवान कई रूप लेते हैं, एक तो सृष्टि कर्ता के रूप में भी है, लिंगोद्भव भी है, उपसंहार कर्ता तांडव नृत्य भी है भगवान का। तांडव नृत्य सिर्फ हमारे शंकर भगवान करते हैं, कृष्ण करेंगे, गोपी गीत करेंगे, रास लीला करेंगे, कोई तांडव नहीं करते। तांडव का अधिकार किसका है? तांडव करेंगे सब गोपी भाग जाएगी, वहां तांडव नहीं करते। कृष्ण शंकर भगवान क्या है? तांडव सबसे डिफिकल्ट है, तांडव।
1: ओम नमः शिवाय।
2: You are listening to Shaivam.org Radio, the 24/7 spiritual channel from Shaivam.org.
3: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. ओम नमः शिवाय।
4: मर नहीं रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा है। पुराने जमाने का पिता मरता नहीं था, वो पुत्र में ट्रांसफर हो जाता था, वो पुत्र के रूप में रूपांतरित हो जाता था। इसलिए यहाँ तात शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पिता की बात नहीं है, ध्यान देना, ये माँ की भी बात है। और जब पिता जब पुत्र में ट्रांसफर हो जाता था ना, तो वो माता अपने आप हो जाती थी, क्योंकि उसको अलग कुछ संकल्प करने की जरूरत नहीं थी। जो पिता का जो पति का जो संकल्प है वो उनका बन जाता था। ये माता पिता पुत्र में रूपांतरित हो जाते थे। इसलिए बड़ा गहरा शब्द है ये तात। दुनिया के किसी भी भाषा में इतना अर्थपूर्ण शब्द नहीं है जो पुत्र को कहता हो। इसलिए बालक नचिकेता इतनी उच्च कोटि के बालक हैं, और यहां अपना निजगत स्वगत कोई स्वार्थ नहीं, ये केवल अपने पिता का स्वार्थ है। इसलिए उन्होंने अपने पिता को भी तात ही बोला है। जो पुत्र के लिए तात शब्द का प्रयोग किया जाता है, नचिकेता ने पिता के लिए किया है। समझ गए कि नहीं? उन्होंने पिता के, उसका मतलब यही था कि आप में और हमारे में कोई भेद नहीं है, और मैं आपका बेटा भी हूं। आपका दूसरी बात, मैं आपका बेटा भी हूं, और आपके सारे दुखों को हरण करने के लिए ही मैं प्रयत्न करूंगा। मैं पुत्र हूं और आप दुखी हैं, आप परेशान हैं, मेरे लिए, मेरे कारण आप दुखी हैं, मैं मर गया, मेरे कारण ही मैं मर गया। और दुखी कौन हो रहे? आप हो रहे। और ये पितृकर्तव्य, इसी पितृकर्तव्य के कारण उन्होंने ये सारा वर मांगा है, नहीं तो इनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है। बड़ा वर मांगा ये पहले वर में, और दूसरे वर में उन्होंने समाज का कर्तव्य है। अब ध्यान देना, ये समाज का कर्तव्य क्या है भाई? यहां आप ऊपरी स्तर पर देखेंगे ना, तो दूसरे वर में इन्होंने यज्ञ मांगा है, यज्ञ विज्ञान कर्मकांड, इसका ये मांगा है। आप मूल मूल में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कर्मकांड यज्ञ विज्ञान मांगा, लेकिन इतनी स्थूल बात नहीं है। जो वर दूसरे वर के रूप में मांगा बालक नचिकेता ने, उसका प्रतिपादन यहां है कि नहीं? दूसरे वर में जो उन्होंने मांगा, क्या मांगा? यही मांगा, यज्ञ विज्ञान माने मानवीय जीवन का सर्वांगीण भौतिक विकास कैसे हो। ये स्वर्गलोक की बात क्या है? स्वर्गलोक स्वर्ग कामो ये जेता, नाचिकेतस विज्ञान भी बोलते हैं। आप यज्ञ यागादि करते हैं ना, इसका नाम नाचिकेतस भी है। ये यज्ञ याग आपके लिए क्या है? केवल कर्मकांड का हिस्सा है क्या? केवल परलोक की तैयारी है या इस लोक की भी तैयारी है? आप बहुत स्थूल दृष्टि से आप देख लेते हैं कि परलोक की तैयारी। मैं आपको एक छोटा सा दृष्टांत बता देता हूं, उसी में आप सब कुछ समझ लीजिए। स्वर्ग कामो ये जेता आदि विधियां हमको यज्ञ की प्रेरणा देती हैं। राजा अश्वमेध ने यजेत, राजा को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और अश्वमेध यज्ञ कौन राजा करता है आपको मालूम है? जो इस धरा का सर्वश्रेष्ठ जो राजा है ना, वही अश्वमेध यज्ञ कर सकता था। और वो एक कल्पना थी, इस लोक का जो सर्वश्रेष्ठ आदमी वही स्वर्ग में जाने का अधिकारी है। जो अश्वमेध यज्ञ करता है 100, वो कौन बनता है? इंद्र बनता है। क्या अद्भुत कल्पना! आपको इंद्र बनना है तो आपको 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। 100 माने 100 बार आपको साबित करना पड़ेगा कि इस धरा का मैं सर्वश्रेष्ठ शासक हूं। समझ गए? और वो यज्ञ, एक तो आपको शक्तिशाली राजा बनना, शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट, या आपके यहां चक्रवर्ती सम्राट, आप श्रवण करते कि नहीं, माने आपके रथ को, आपके घोड़े को कोई इस पृथ्वी पर रोकने वाला ना हो, चक्रवर्ती सम्राट, पूरे पृथ्वी मंडल पर आपका साम्राज्य हो, शासन हो, और आपको यज्ञ करना, इतना समृद्धशाली होना है आपको, तो आपकी निकम्मा कमजोर आदमी बनेगा, और उस राजा की फिर प्रजा कैसी होगी? दुबली पतली मरी मराई। आप कल्पना करो, क्या अद्भुत चीज थी। माने आपको स्वर्ग जाना है, इंद्र बनना है, तो आप सबसे पहले क्या करो? आप अपने पृथ्वी को ठीक करो, मतलब यही हुआ ना। आप पहले अपने घर को ठीक करो, आप इस पृथ्वी लोक के लोगों के दुखों का हरण करो, उसकी गरीबी हरण करो, उनको सुव्यवस्थित बना दो, सुशिक्षित बना दो, आप अपने राज्य को मजबूत बनाओ, और यज्ञ करो, और तुमको रोकने वाला कोई ना हो। इतना बड़े, इतना एक दो बार भी नहीं, कितने बार? 100 बार। 100 बार आप बोलते भी ना, अरे 100 बार बोला यार, सुन नहीं रहे हो, ऐसा बोलते। इसका मतलब केवल आपको यज्ञ कराना नहीं है ना, केवल आपको परलोक के स्वप्न नहीं दिखाना है। हम लोग गलत समझ गए, शास्त्र को ही गलत समझते हैं हम लोग। कर्मकांड में जो चीजें हैं वो बहुत ऊंची हैं। ये आपके इस लोक को केवल परलोक के स्वप्न दिखाना ही कर्मकांड का उद्देश्य नहीं है, आपके वर्तमान जीवन को सबसे पहले ठीक करना, आपके वर्तमान जीवन को सुव्यवस्थित करना, ये आपके कर्मकांड का प्रमुख ध्येय है। आपको कणाद का एक बड़ा सुंदर सूत्र बता देते हैं। आप न्याय मीमांसा पढ़े होंगे, वेदेन प्रयोजनम उद्दिश्य विधीय मानो अर्थो धर्म। मीमांसा में धर्म की परिभाषा दी, धर्म की परिभाषा। उन्होंने कहा कि आपके सामने प्रयोजन का उद्देश्य करके जो विधान किया गया कर्म है ना, वही धर्म है। और वो विधान क्या है? स्वर्ग कामो ये जेता। आपको स्वर्ग जाना है तो आप यज्ञ करो, स्वर्ग जाना है तो यज्ञ करो। तो आप यज्ञ कैसे करोगे? यज्ञ की तैयारी करो। और यज्ञ की तैयारी को एक दो दिन होगी क्या? हाँ, बहुत लंबा चौड़ा, पूरे राष्ट्र को जगाओ, समृद्ध बनाओ, ये पूरी प्रक्रिया है। तब जाके यज्ञ, और तब जाके फिर स्वर्ग। बात भी सही है, आपको यही चलना नहीं आता तो वहां चलोगे क्या? स्वर्ग में जाके राजा बन जाए यहाँ तो क्या करेगा? वहां जाके मान लो कि यहाँ का नेता कोई वहां जाके इंद्र बन गया तो क्या करेगा वहां? आप कल्पना करो वहां क्या करेगा वो। वहां भी अन्ना हजारे को पैदा होना पड़ेगा। यदि वहां भी जाए यहाँ का नेता तो वो भी वही करेगा, वहां जाके वही करेगा। इसलिए नहीं, वहां आपको जाना है तो आपको यहां उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, वैसा बनना पड़ेगा यहां लोग जीवन जीवन में बनना पड़ेगा। कणाद ने एक बड़ी सुंदर आपको परिभाषा दी, या तो अभ्युदय निश्रेष सिद्धि ही स धर्म। माने इसी परिभाषा को उन्होंने विस्तृत कर दिया है। धर्म उसका नाम है जो आपके इस लोक को और परलोक को सुधारता है। धर्म उसका नाम है जो इस लोक को भी आपके सुधारे और परलोक को भी सुधारे। यह तो अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता है इस लोक में अभ्युदय, माने आपका जीवन समृद्ध हो। और जीवन समृद्धि का अर्थ यही है कि आपको आपका रहन सहन खान पान आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आपका धर्म केवल त्याग पर भी आधारित नहीं है, आपका धर्म भोग में त्याग पर आधारित है। आपको त्यागी नहीं बनाना है, ध्यान देना। ये आपका जो आप बहुत गहराई से शास्त्र का अध्ययन करना, आपको शास्त्र त्यागी बनाना चाहता है क्या? नहीं, आपको भोग में त्यागी बनाना चाहता है। माने आपके पास सारी समृद्धि हो लेकिन आपकी आसक्ति कहीं पर भी ना हो। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजेथा मा घ कस्य स्विद्धनम कुर्वन् नेवेह कर्माणि। जिजी विशेष क्षतम समाह। श्रुति कहती कि आप 100 साल तक जीव कर्म करते हुए और भोग सारी सामग्री में रहते हुए आपका मन, अच्छा बात तो सही है कि आपका मन सारी चीजों में रहते हुए निर्लिप्त है, आप सत्य के पक्षपाती हैं, तो उस समय आप असत्य के लिए कुछ करोगे क्या? ना। आप सत्धर्म जीवन में नैतिकता का पालन करने वाले हैं और उस समय आपके सामने कहीं बेईमानी करने का अवसर आ जाए तो बोले नहीं भैया, ये नैतिक चरित्र, ये नैतिक चरित्र हमारे यहां पर, नैतिक चरित्र निराशक्ति इनका बड़ा महत्व है, इसलिए कहा गया कि आप अपने इस जीवन को समृद्ध बनाओ, स्वधर्म का आचरण करते हुए पुरुषार्थ के बल पर, और फिर वही जीवन आपके परलोक के प्रति भी कारण हो, यह लोक और परलोक अथवा यहां पर निश्रेष अभिसिद्धि का अर्थ आप मोक्ष कर लीजिए। आपको परलोक नहीं जाना है, आपको मोक्ष ही पाना है, तो आप निश्रेष अधिगमः मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। लेकिन आप भूखे नंगे रहकर, हाँ ये बात अलग है कि आपको रहना नहीं है, आपको संसार में नहीं रहना है तो छोड़ दो कोई बात, लेकिन शास्त्र जबरदस्ती नहीं करता है। आपको शास्त्र ये नहीं कहेगा कि भाई ये जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आपको ब्रह्मज्ञान नहीं हो, ऐसा है क्या? ऐसा होता तो कृष्ण को कभी ज्ञान ही नहीं होता, ऐसा होता तो राजा जनक को कभी ज्ञान ही नहीं होता। राजा जनक भोग सामग्री ऐश्वर्य में है लेकिन परम ज्ञानी, परम ज्ञान। इसलिए मैंने आपको एक दिन बोला था, यहां सदगृहस्थी भी ब्रह्मज्ञानी है, यहां सन्यासी भी ब्रह्मज्ञानी है, यहां योगी भी ब्रह्मज्ञानी, यहां कर्मी भी ब्रह्मज्ञानी, यहां बच्चे भी ब्रह्मज्ञानी और यहां माताएं भी ब्रह्मज्ञानी। आपका जो ब्रह्मज्ञान, जो सर्वोच्च आत्मस्थिति है, वो किसी से बंधी हुई नहीं है। इसलिए आपका शास्त्र कहता है, परम पूज्य महाराज श्री ने एक जगह पर कहा कि आपके लिए यहां बहुत सारी चीजें बताई, यहां वाद्य वादन नृत्य संगीत कला क्या है आपके यहां, हर चीज माने आप दुखी हो परेशान हो ये शास्त्र नहीं कहता है। आनंद पूर्ण जीवन और उस आनंद में परमानंद, आपके उस आनंद में परमात्मा का आनंद जुड़ा हुआ हो, बस आप संसार में रहे और उसके बाद फिर आप तत्वनिष्ठ हो, आप भोग ऐश्वर्य में रहते हुए भी आप तत्वनिष्ठ हो। आज बालक नचिकेता जो मांग रहे हैं ना, ये आपके लौकिक उन्नति की चीजें हैं, लौकिक उन्नति की, समाज की उन्नति की, समाज में कोई भूखा ना हो। एक महात्मा एक बड़ी गंभीर बात कहते थे, वो कहते थे कि भैया यज्ञ यज्ञ तुम बोलते हो ना, यज्ञ क्या है? वो कहते थे कि यज्ञ राजा जब करता था तो उस राज्य की गरीबी दूर हो जाती थी। पहले जमाने में 10-10 साल तक यज्ञ हो रहे, बड़ा भारी यज्ञ राजा ने शुरू किया, जिस क्षेत्र में शुरू हो गया यज्ञ, अब उस क्षेत्र की गरीबी दूर हो गई। आप कल्पना कर सकते वो मतलब क्या था, वो वहां तो हजारों लोग फिर वहां आ जाते, हजारों लोग आते थे और सबको सबका हिस्सा मिल जाता था, उसमें सबको सबका हिस्सा मिल जाता, वो समृद्ध हो जाता, वो जगह जहां पर राजा यज्ञ करता था, वो स्थान वो प्रांत वो समृद्ध हो जाता था, राजा का पूरा ध्यान वहां। माने एक बहुत बड़ी क्रांति की तरह चीजें थी ये यज्ञ, और इन्होंने यज्ञ विज्ञान मांगा समाज के उत्थान के लिए। यहां तो यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें कही गई यहां, लेकिन आप जब गंभीरता से इसका अध्ययन करते हैं तो ये यहां पर नहीं है। जो दूसरा वर जो दिया है संक्षेप में कहा गया या इष्ट का इत्यादि बोल के उसको यहां वर्णन नहीं किया है। यहां क्या क्या आचार्य यम ने कर्मकांड मंत्र विज्ञान आदि बताया वो भी नहीं बताया। यहां तो उन्होंने ये भी बोला है कि चलो मैं तुमको और भी चौथा वर देता हूं, ऐसा कहकर दूसरे वर में एक चौथा वर दे दिया इन्होंने। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कर्म की श्रृंखला में तुमको देता हूं, माने अनेकों मंत्र माने ऐसे अद्भुत अद्भुत मंत्र उन्होंने नचिकेता को दिए है ना, बहुत अद्भुत अद्भुत मंत्र। कोई नचिकेता सामान्य था वो तो बहुत, जब आचार्य यम मिले अब वो नचिकेता नचिकेता थोड़ी रहा, वो जब तो यमलोक से जब पृथ्वीलोक में आया तो पृथ्वीलोक का सबसे बड़ा आदमी समझ लो वो। इसलिए अग्नि का भी नाम नचिकेता, उसी के नाम पर अग्नि का नाम पड़ा। जो आप यज्ञ याग मंत्र कर्म का ये सारी चीजें जो है ना, उसका प्रचार फिर नचिकेता ने किया है। बहुत सारे मंत्र उन्होंने उनको दिए चौथे वर के रूप में है ना, लेकिन जो बहुत सारी चीजें यहां आप देखना, वर्णन नहीं है उसका। कई बार लोग प्रश्न भी पूछते हैं, हमको भी किसी ने प्रश्न पूछा था जब पढ़ते समय कि भैया नचिकेतस जो कर्मकांड विद्या थी ये यहां अग्नि विद्या का वर्णन ही नहीं है। अग्नि विद्या का कहां वर्णन है, क्या कर्मकांड, कुछ भी नहीं, थोड़ा थोड़ा वर्णन करके आगे बढ़ गए, बस दे दिया हमने। लेकिन क्या दे दिया वो गुप्त है, इसलिए आप ये मत सोचना कठोपनिषद आपके हाथ में आ गया तो आ गया। ये गुप्त है, गुप्त कर दिया उसको। जो मंत्र यहां क्या अनंत श्रृंखला कर्म के मंत्रों की, वो भी मैं तुमको देता हूं। वो कहां है वो, हाँ जो अग्नि विज्ञान वो कहां पर है, छिपा दिया वो। इसलिए आप ये मत सोचना कि जो भी चीजें पुस्तक में लिखी है उतनी ही है। ये बहुत सारे सीक्रेट जो है ना वो होता है, होती हैं साधुओं के पास, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं उनके पास। अभी एक महात्मा जी थे, आप जानते होंगे गिरीश जी, स्वामी गिरिजानंद सरस्वती जी महाराज, नाम सुना तो होगा। यहां भी आए उनके ब्रह्मचारी लोग, यहां आते थे कर्मकांड के लिए, पंडित लोग इंदौर से आते थे। अभी अभी शरीर छूटा उनका, 135 साल की उम्र थी उनकी, 135 साल की, और वो श्री विद्या के उपासक। जब मैं पहली बार 2002 में या 3 में उनके पास गया तो जब बहुत सारी लंबी लंबी बात बोल रहे थे तो मुझे लगा ये गप मार रहे हैं, ऐसा लगा। पहली बार मुझे भी समझ में नहीं आया वो क्या महात्मा थे, मुझे लगा कि बहुत लंबी गप हाँक रहे हैं। अरे वो तो बातें बोलते थे 200 साल पुरानी। उन्होंने बोला कि वहां बोले कि विवेक हम रामेश्वरम घूमने के लिए गए थे, और वहां रामेश्वरम में बोले हमने सुना कि कोई सन्यासी महात्मा बोले वहां समुद्र में कूद पड़ा, बोले हम भी गए तो वहां, फिर बाहर निकला बोले मैंने अपना ये शरीर का वस्त्र दिया, कुछ कपड़ा नहीं था पहनने को। अरे बोले वही विवेकानंद जी थे, और वो सहजता से बोल रहे। मैं भी सोच रहा था कि क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो सही थी बात, वो सही थी, वो गलत नहीं बोल रहे थे। 135 वर्ष की उम्र थी उनकी, और वो इतनी ऊंची ऊंची अनुभूतियां सुनाते थे, इतनी ऊंची ऊंची अनुभूतियां। महान सिद्ध पुरुष थे वो, गुप्त काशी में रहते थे वो, और वो साल में एक बार वो आते थे यहां इंदौर में। अरे क्या महापुरुष था वो, मैं आपको एक दो घटनाएं सुनाई देता हूं, उनका चरित्र सामने आया। वो तो दिव्य अनुभूतियां करते थे अपने भीतर ही भीतर, आपको मंत्र वो उसमें मंत्र है, ये पुस्तक में नहीं है, ये तो जड़ है, ये तो नक्शा है, नक्शा। ये पुस्तक जो है ना ये नक्शा है, नक्शा आपके हाथ में, नक्शा है, मैप है, और उस मैप में केवल इशारा है, वहां रोड नहीं, वो इशारा है भैया यहां से यहां। और आप मैप में कुछ बदलाव होता है कि नहीं, क्यों नहीं होता है, रास्ते बदलते हैं ना, मैप है 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 1000 साल, हाँ वो गलत नहीं है, वो सही है, बिल्कुल सही, इशारा सही है। आपको यदि सचमुच वो रहस्य जानना हो तो आप किसी तत्वनिष्ठ महापुरुष के जीवन से, नहीं तो शास्त्र तो एक शब्द के स्थान में शब्द बोल देता है, आदमी व्याख्या कर लेता है, लेकिन वास्तविक जो रहस्य है ना वो सीक्रेट है, और वो सिद्ध ज्ञानी मुनि साधुओं के पास है, और वो परंपरा से रक्षित है, संरक्षित है। परम पूज्य महंत जी महाराज जी अपने आश्रम के, वो जब बाल्यकाल में विचरण करते थे गिरनार के पहाड़ियों में, बड़े विरक्त भाव में विचरण करते थे, बहुत विरक्त। अखंडानंद जी महाराज जी ने उनको अपने गद्दी पर ऐसी थोड़ी बैठाया था, हम अक्सर उनके बारे में कम सुनते हैं, वो बहुत महापुरुष थे वो। जब वो गिरनार के पहाड़ियों में विचरण करते थे तो वहां पर एक कोई महान सिद्ध पुरुष मिला जंगल में घूमते घूमते, विरक्त भाव से बच्चे थे, एक बड़ा भारी करीब 7 फुट ऊंचा, और ऐसा लग रहा था कि मानो पूरा का पूरा पेट चल रहा हो, ये पूरे शरीर की जो चमड़ी है वो जैसे लगता है कि कोई लकड़ी की छाल हो जैसे। और उन्होंने कहा कि वाह बोले आ गए, तुम्हारी खोज थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि शरीर का त्याग करूं, शरीर छोड़ दूं, लेकिन मेरे गुरु ने मुझको आदेश दिया है जब तक तुम्हारे जो मंत्र हैं, तुम्हारे भीतर जो भी मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान है दूसरों को ना दो तब तक शरीर नहीं छोड़ना है। और मैं चाहता हूं कि कोई योग्य व्यक्ति मिल जाए और सारा ज्ञान ध्यान मैं उसको दे दूं और मैं शरीर छोड़ दूं मैं। अच्छा बोले अब तुमसे क्या योग्य मिलने वाला है, तुम्हारी तो खोज थी। लो तो फिर महंजी महाराज ने पूछा कि क्या है वो जो आप देना चाह रहे, क्या है? अरे बोले बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी सिद्धियां हैं। बोले सिद्धियां दूर दूर की चीजें तुम सुन लोगे, दूर दर्शन, ये शरीर को हल्का करना, जो अष्ट सिद्धियां थी ना वो सारी तुम्हारे में आ जाएगी। वो तो महंजी महाराज ने कहा कि दूसरे की सुनूंगा मैं, दूर का देखूंगा। अरे बोले ये जितना दिख रहा है इसी से मैं ज्यादा परेशान हूं मैं, जितना मैं सुन रहा हूं उसी से मैं बहुत परेशान रहता हूं मैं। और बोले मैं वो दूसरे के कमरे में क्या हो रहा है वो भी मैं देखना शुरू कर दूं तो? अरे बोले और गड़बड़ बात है। बोले दूर का देख के क्या फायदा? बोले जो मैं अपने आप को भी देख नहीं पा रहा हूं। दूर का सुन के क्या फायदा? बोले कि मैं अपने को ही सुन नहीं पा रहा हूं। और मैं यदि उड़ के दूसरे जगह पर जाऊं तो बोले क्या फायदा है, कवा भी जाता है। बोले हमको ये विद्या नहीं चाहिए, और हमको चाहिए कोई आत्मज्ञान ब्रह्मज्ञान, ये नहीं चाहिए मुझे। बोले रहो तुम अपनी सिद्धियां तुम अपने पास।

और एक भी ऋषि जीवित है वो शास्त्र वो बना लेगा, जो बोलेगा वो शास्त्र बन जाएंगे। वो ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि जो गिरिजानंद सरस्वती जी महाराज की बात सुना रहा था मैं, उन्होंने सुनाया कि वो कौन सा पर्वत बोले थे मैं भूल गया, भगवान शंकर ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी वहां हिमालय है, और वो हिमालय में विचरण करते रहते थे, बस वहीं विचरण ऊपर ही ऊपर। बोले वहां मैं गया और भयंकर गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी धूप और बर्फ है वहां, पूरा बर्फ ही बर्फ, इतनी गर्मी, इतना मतलब वहां सूर्य की रोशनियां कि आप एक घंटा भी यदि वहां खड़े हो जाए तो आपका पूरा शरीर काला हो जाए, इतना मतलब। बोले वहां गया तो एक बड़ा सुंदर सरोवर मैंने देखा, और उस सरोवर में नील कमल, और जैसे नील कमल उन्होंने देखे उनके मन में भाव जगा कि मैं जगदम्बा पराम्बा की मैं पूजा करूंगा इन नील कमलों के द्वारा। और जैसे वो नील कमल को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो उसमें बर्फ का कीचड़ है, वो पूरा बर्फ की, वो पूरी की पूरी जो झील है ना बर्फ की झील है, और जैसे ही वो नील कमल को छूने लगते हैं तो उसी में जगदम्बा प्रकट हो जाती है। आप कल्पना करो दृश्य कैसा रहा होगा। और वो सोचते कि अरे इसमें तो जगदम्बा है, चलो अगला फूल तोड़ लेते हैं, और जैसे उसको छूने लगते उसी में जगदम्बा प्रकट हो जाती, और वो घंटों नारायण वैसे के वैसे वो फूलों को छूते रहे, पराम्बा जगदम्बा का अनुभव होता रहा, शरीर का ध्यान खो गया और बर्फ के पानी में क्या, ऐसी एक नहीं ऐसी अनेकों अनुभूतियां। अब वहां ऐसा महात्मा जो भी बोले ना आपके लिए मंत्र बन जाता है, वो आपके लिए जो भी बोल दे, जो भी कोई भी शब्द आपके लिए बोल दे, कोई भी शब्द वो आपके लिए मंत्र बन जाता है, वो बीज मंत्र बन जाता है। क्योंकि वह अनुभूति है, और ऐसे महापुरुषों के जीवन में ही शास्त्र संरक्षित है, मंत्र संरक्षित है, और आप कहते हैं ना गुरु की आवश्यकता इसीलिए है, गुरु की आवश्यकता जो आप बोलते हैं ना इसीलिए, क्योंकि कर्म पुस्तकों में पूरा कभी वर्णन होता नहीं है, वो सीक्रेट है, और वो शास्त्र महात्माओं के जीवन में संरक्षित होता है, और पुस्तक में तो केवल संकेत भर है, हाँ ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। इसलिए यहां पर कर्मकांड का कुछ भी वर्णन नहीं है। आप मूल में प्रथम वल्ली में आप देखना क्या क्या वो मंत्र थे, हाँ मैंने गलत हाथों में न जाए, इसलिए उसने छिपा दी। आदमी अपने द्वारा कोई भी चीज काम करता है ना तो वो कई बार गलत भी हो जाता है। इसलिए आपको एक छोटा सा दृष्टांत बता देते हैं, फिर मैं आपको इसको विराम दूंगा। एक ये सत्य घटना है, एक कोई महात्मा थे, महात्मा मैंने सदग्रस्त, और वो कुछ आयुर्वेद के ऊपर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने सारे जितनी भी शास्त्र खोज डाले और वो प्रयोग कर रहे थे कि ये सिद्ध होगा कि नहीं। उन्होंने जैसा जैसा शास्त्र में लिखा वैसी सारी प्रक्रिया समय के अनुसार वो सब कर दी, लेकिन कुछ वो प्रयोग रसायन तैयार नहीं हो रहा था। अंत में उनको लगा कि तो बकवास है लिखा हुआ, गड़बड़ लिखा हुआ, और उन्हें अंत में निराश हताश होकर वो पुस्तकें जो थी उठा के बंद कर दी, और वो अब सोचेगा अभी तो बकवास है, चलो अब कोई दूसरा काम करते। उसी समय एक दूसरा साधक प्रकट हो गया महात्मा। उन्होंने कहा भैया इतने निराश क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे बोले मैं पूरी जिंदगी लगा दी आयुर्वेद में और उसके बाद भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, और वो झूठ लिखा है सब कुछ। उन्होंने कहा नहीं झूठ नहीं लिखा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो गुरु के लिए छोड़ दी है, उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो गुरु के लिए छोड़ दी हैं, और तुम जो करते हो ना बिल्कुल सही करते हो, लेकिन तुम्हारी कहां मिस्टेक है चलो मैं बताता हूं तुमको, तुमको मेरी कितनी जरूरत है तुमको मैं बता देता हूं। वहां गए सारे बोले जैसे शास्त्र में लिखा वैसे करो, तुम करो करते जाओ, किया उन्होंने जैसा करना था वैसे किया, अंत में उसमें नींबू नहीं छोड़ना था उसमें कुछ, तो जैसे समय आया इतना ये इतना इतना, जैसे उसने चाकू लिया और वो काटने लगा, उसे रुक चट से उन्होंने नींबू लिया, बूका मारा फोड़ा और इन्होंने नींबू नहीं छोड़ दिया, वो तैयार हो गया रसायन, रसायन तैयार हो गया। बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बोले ये क्या हुआ। बोले कुछ नहीं ये किया क्या, हुआ कैसे।

मैं तो हजारों बार किया लेकिन हुआ नहीं, और आपने तो एक ही बार निभो निभो गया। अरे बोले यही तो था, इसमें तुम्हारी दो मिस्टेक हो गई। इसमें दो मिस्टेक क्या हो रही थी, एक तो नींबू को काट रहे थे हाँ, और उसमें लोहे का स्पर्श हो रहा था, और लोहे का अंश आप नींबू काटना उसमें भी गंध आती है लोहे की, लोहे का स्पर्श हो रहा था। और दूसरी बात ये थी कि आप जब काटने के चक्कर में वो विलंब भी हो रहा था, तुम काटते यूं करते विलंब, वो नहीं, वहां इतनी सूक्ष्म बात है, वहां लोहे का भी स्पर्श उसको स्वीकार नहीं और तुम्हारा विलंब भी स्वीकार नहीं। बोले यही मेरे गुरु, यही तुम्हारे लिए गुरु की सार्थकता है। बोले तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो गुरु के लिए शास्त्र ने छोड़ा। यहां पर भी प्रथम वल्ली में आचार्य यम ने संकेत भर किया है कि कर्म कांड कौन सा मंत्र दिया, कैसे दिया, आपको कल बताएंगे। तृतीय वर्ष किस रूप में आगे बढ़ता है।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम डॉट ऑर्ग रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम डॉट ऑर्ग।
0: ओम नमः शिवाय।